0: IT 名古屋。
1: Hello and a very warm welcome to all the listeners of Akashvani. मैं हूँ साक्षी मांडवाला और मेरे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं शाहिद जी और हम दोनों आपके लिए लेकर आने वाले हैं the live updates of the ongoing Asian Games happening in Aichi Nagoya, Japan. और सबसे बड़ी खबर दोस्तों जो आज दिन की आ रही है वो है सॉफ्ट टेनिस की दुनिया से, क्योंकि जय मीना ने भारत को पहली बार सॉफ्ट टेनिस में

0: एक मेडल अश्योर करवा दिया है एशियन गेम्स में. जी हाँ, यू हर्ड मी राइट. इंडिया स्टैंड्स टू बी अश्योर्ड ऑफ अ मेडल फिनिश एंड ऑल्सो ऑफ अ मेडल इन द वर्ल्ड ऑफ सॉफ्ट टेनिस in Asian Games. A sensational comeback from Jay Mina to deny Sherwin Nugent the semi-final spot. और हमने ये देखा कि पहले वो 3-3 के साथ गेम में फाइनल गेम में अटल एक साथ टाइड अप थे, लेकिन Jay Mina was trailing 3-5 in the final game before clawing back to win the next 4 points and eventually taking the quarter final 4-3. आपको बता दूं फाइनल स्कोर लाइन रही 0-4, 4-2, 2-4, 4-2, 5-3, 2-4, 7-5 and obviously India's Jay Mina came out successful at the end of that game to move ahead for assuring India for the first medal in soft tennis. Jay Mina ka jo ab mukabla hai, which is in the second men's single semi-final, wo hoga aaj dopahar 12 baje. शाहिद
1: जी बिल्कुल, शूटिंग से बढ़िया खबर आ रही है. हालांकि अभी तक जो उम्मीद की जा रही वैसा प्रदर्शन नहीं है, लेकिन शूटिंग के स्कीट वर्ग से, महिला वर्ग से एक अच्छी खबर है. भारतीय जो तिकड़ी है, परिणाम धानीवाल, महेश्वरी चौहान, इसके अलावा रायजा ढिल्लोन की जो महिला टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया, परिणाम धानीवाल और रायजा ढिल्लोन ने 125 में से 111 अंक जुटाए, जबकि महेश्वरी चौहान ने 109 अंक हासिल किए, कुल 331 अंक जुटाए और भारत ने यहां पर कांस्य पदक जीत लिया. इस वर्ग में चीन ने 357 अंकों के साथ गोल्ड, जबकि कजाकिस्तान ने 336 अंकों के साथ सिल्वर मेडल जीता. यानी काफी ज्यादा फासला रहा गोल्ड और कांस्य पदक का, जो देखा जाए अंक देखा जाए तो. उधर महिला वर्ग के स्कीट स्पर्धा में भारतीय महिला निशानेबाज राजा ढिल्लोन और परिणाज धालीवाल दोनों फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई. उम्मीद है यहां से भी अच्छी खबर आएगी. चलते चलते एक और शूटिंग की खबर देते, हालांकि मनु भाकर भी फाइनल मुकाबला खेल रही है, लेकिन इससे पहले बताएं दिन की जो शुरुआत हुई थी बेहद निराशाजनक रही थी. साक्षी, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल मिस पर जो मुकाबला था, वहां मनु भाकर ने 579 के स्कोर के साथ व्यक्तिगत फाइनल में पहुंच गई. हालांकि एकलौती खिलाड़ी रही. वहीं ईशा सिंह, जिनसे काफी उम्मीदें थी, सुरुचि जो बेहद जबरदस्त खिलाड़ी है, दोनों कुछ खास नहीं कर पाई, दोनों फाइनल के लिए चूक गई. बताएं ईशा सिंह ने 572 अंक जुटाए, वहीं सुरुचि 568 अंक ही जुटा पाई. हालांकि अभी मनु भाकर फाइनल मुकाबला खेल रही है.
0: राइट, एंड नाउ मूविंग ऑन टू सेपक तक्रो, जहां पर भारत ने आज फिलीपींस को पहले मैच में 2-0 से हरा दिया. और उसके बाद अगर हम बात करें, दिस वॉज फ्रॉम द टीम रेगू प्रिलिमिनरी ग्रुप बी क्लैश. इसके बाद भारत ने फिलीपींस को दूसरे मैच में भी 2-0 से लीड बना ली. सो इट लुक्स लाइक इंडिया आर क्लोजिंग इन ऑन अ क्लीन स्वीप ओवर फिलीपींस, क्योंकि अब तीसरा और फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है. वहीं अगर रोइंग की भी बात कर ले तो सतनाम सिंह और सलमान खान ऑफ इंडिया दोनों, दे फिनिश सेकंड इन द मेंस डबल स्कल्स हीट्स विद 6:15.63 टाइमिंग को क्लॉक करके, एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, फाइनल ए. वहीं बलराज पनवर फिनिश थर्ड इन द मेंस सिंगल स्कल्स एंड हैज एडवांस टू फाइनल ए. महिलाओं की अगर रोइंग में बात करते हैं तो इंडिया फिनिश थर्ड इन द रोइंग वुमेन्स 4 हीट्स एंड दे विल नाउ टेक पार्ट इन द फाइनल ए. शाहिद
1: जी बिल्कुल, टेबल टेनिस से खबर आ रही. मिश्रित युगल के दूसरे दौर में भारत के हरमीत देसाई और यशस्विनी घोरपड़े ने मालदीव के मोहम्मद इस्माइल और फातमित अली के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला है. वहीं मानुष शाह और दिया चितले ने श्रीलंका के चानुल कुलपाडू और भिवांडी को 3-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है.
0: राइट, कनू स्पिरिट में थोड़ी सी अच्छी खबर आपको मैं देने वाली हूँ, क्योंकि भारत के जो मेंस कयाक है फॉर 4500 टीम फिनिश थर्ड इन द हीट्स एंड क्वालिफाई फॉर द फाइनल ए. इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेशन कनू स्प्रिंट में जो है वो है ओनम अरुण सिंह, हर्षवर्धन सिंह, शक्तवत, वरिंदर सिंह और नावचा सिंह लाए तो जाम कंबाइंड फॉर अ टाइमिंग ऑफ 1 hour 29.447 seconds इन द हीट्स. मेघा प्रदीप फिनिश फिफ्थ इन द वुमेन्स कनू सिंगल 200 meters हीट्स विद द टाइमिंग ऑफ 46.675 and qualified for the semi-final. These are all the updates that we have been bringing to you. And a very quick, आपको ये भी बता दे कि medal tally में इस समय भारत कहाँ पर फिलहाल stand कर रहा है दोस्तों. Well, not a lot of good news on that front, क्योंकि अभी भारत को आज भी मेडल का इंतजार है. तो स्टैंडिंग तो वही है भारत की, यानी 8वें स्थान पर, जिसमें एक गोल्ड जो कल हमारी विमेन्स क्रिकेट टीम लेकर आई थी. और उसके साथ साथ हम बात करते हैं तो उसके साथ साथ हम बात करें तो 2 bronze भी हमारे पास है, एंड ऑफ कोर्स अलोंग विद दैट 3 bronze सॉरी एंड 4 silver, मेकिंग इट अ टोटल ऑफ 8. दैट इज ऑल द अपडेट्स दैट वी ब्रॉट टू यू इन दिस मॉर्निंग अपडेट एट 9:30 AM. फॉर द मोमेंट इट्स मी साक्षी मांडवाल एंड शाहिद आजमी सेइंग गुड बाय. स्टे ट्यून्ड, वी विल कम बैक एट 10:30.
2: நேயர்கள், இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள்

रूपा और मेराज अहमद खान ने फाइनल में 346 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया और भारत के खाते में ब्रॉन्ज मेडल जोड़ दिया। इस वर्ग का गोल्ड मेडल कतर ने 553 अंकों के साथ जीता, जबकि सिल्वर मेडल कुवैत ने 548 अंकों के साथ अपने नाम किया। इससे पहले आज सुबह परिणाम धालीवाल, महेश्वरी चौहान और राजदान ढिल्लों ने महिलाओं की स्की टीम स्पर्धा में 331 अंकों के साथ कांस्य पदक हासिल किया। वहीं महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में एकलौती फाइनलिस्ट मनु भाकर 181.1 स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर रही और इस वर्ग का गोल्ड मेडल दक्षिण कोरिया ने और सिल्वर मेडल चीन ने जीत लिया। एक बड़ा सेटबैक भारत को मिला है यहां पर 10 मीटर में, जहां पर कोई पदक इंडिविजुअल में भारत के खाते में नहीं आया।

0: Gee, thank you so much, Shahid. And the next update that you bring to you is from the world of Kabaddi, where there's a good news coming in because India beat Iran 37-23 in the Kabaddi women's team Group A. Both the teams are now locked on 4 points in the group and have ensured their semi-final spots. And men's team Kabaddi, if we talk about it, this competition is at this time Bharat and Bangladesh ke beech mein, jahan first half mein Bharat ne Bangladesh ko comfortably 29-9 se hara diya tha. Ab is samay second half on ho chuka hai aur latest update ye hai ki second half mein Bharat ke paas 1 point ki filhal badhat bani hui hai, yani 2-1 jisme 2 ank Bharat ne apne paas rakhe hain, jeete hain, kamaye hain aur dusri taraf Bangladesh ne abhi tak sirf 1 hi ank kamaya hai. The total standing at 31 points for India as of now, while Bangladesh leading, should I not say leading but rather Bangladesh lagging behind with just 10 points on board.
1: जी बिल्कुल, शूटिंग की जैसे मैंने पहले बात की थी, एक और खबर हमारे पास आ गई शूटिंग से. अनंजीत सिंह नरू का फाइनल के लिए उन क्वालिफाई कर लिया है, आठवें स्थान से हालांकि फिनिश किया क्वालिफिकेशन में, लेकिन जब क्वालिफिकेशन के बाद जब फाइनल मुकाबला आता है तो बहुत ऊपर नीचे मुकाबला पहुंचता है. लेकिन एक मेडल की उम्मीद भारत की एक और बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है, भारत बनाम चीन पुरुषों का जो बैडमिंटन मुकाबला है. भारत के अगर लाइनअप की बात करें, यहाँ पर तो लक्ष्य सेन शी यूची से भिड़ेंगे, बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा. वहीं पर बैंड डबल्स की सबकी निगाहें होगी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से, वहां पर लियांग वेई केंग और वांग चांग से भिड़ेंगे, ये भी बड़ा जबरदस्त मुकाबला होगा. वहीं मेन डबल्स में आयुष शेट्टी का सामना होगा ली शी फेंग से. वहीं मेन्स डबल्स का जो दूसरा मुकाबला होगा, हरिहरन अमक अरुण और एम आर अर्जुन भिड़ेंगे हेजी टिंग ल्यू यी से. जबकि मेन्स सिंगल्स का तीसरा बेहद अहम मुकाबला होगा, निगाहें होंगी किदांबी श्रीकांत पर जो भिड़ेंगे हो यांग से.
0: राइट, एंड नाउ मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड ऑफ फेंसिंग, वहां से भी आपके लिए कुछ अपडेट्स लेकर आ रहे हैं आज के दिन में कि फेंसिंग की दुनिया से मेरे पास आपके पास दोस्तों कुछ खास खबर देने के लिए अच्छी है नहीं, बिकॉज द इंडियन बोथ द इंडियंस फेस डिफीट्स इन द वुमेन्स फॉइल इवेंट. जी हाँ, मीना देवी नावरम लॉस्ट टू जापान्स यूका उइनो 1-5, वाइल जॉयस अश्विता स्टैनली राज लॉस्ट टू मकाउस ह्यू लामकू 0-5. वहीं अगर हम बात करते हैं कि वुमेन्स फॉइल इंडिविजुअल इवेंट के अंदर भी फेंसिंग में, तो मीना देवी नावरम वहां से भी she has gone out of contention in the women's foil individual event after suffering a heavy defeat to South Korea's Park Ji-hee in the round of 32. Well, also to tell you, South Korea's Park Ji-hee completely dominated this contest from the outset, securing a convincing 15-3 victory to advance to the next round.
1: जी बिल्कुल, वेट लिफ्टिंग पे भी निगाहें होंगी, हालांकि मुकाबला अभी चल रहा है, बताना अभी बहुत जल्दी होगा कौन जीतेगा, लेकिन सभी की निगाहें भारत की धाकड़ जो वेट लिफ्टर है मनु भाकर पर सबकी निगाह, माफ कीजिएगा, सबकी निगाहें होंगी मीराबाई चानू पे, वो क्या कमाल करती हैं. जैसे ही नतीजा आएगा आपको अपडेट में बताएंगे. फिलहाल लेकिन जिस तरह से भारत ने अब तक 9 पदक जीते हैं, उम्मीद है कि आज जब शाम ढलेगी तब भारत के पदकों की संख्या बढ़ेगी जिनमें शूटिंग का बड़ा महत्वपूर्ण हाथ है.
0: राइट, एंड अनदर क्विक अपडेट कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड swimming also for all our listeners ki Sajan Prakash missed the swimming men's 100 meter butterfly heats. Meanwhile, his compatriot Benedictine Beniston had finished 4th in the heats with a 53.08 seconds timing. Wahi Anish Sunil aur Vedant Madhavan ki agar baat kare to wo 4th aur 6th sthan par unhone finish kiya men's 200 meter freestyle heats ke andar. Anish clocked 1 minute 22.65 ahead of Madhavan's 1 minute 23.67 seconds. So not a lot of good news from the world of swimming also coming in, and a very quick update coming in also would be from the world of shooting, जहां आज जैसे हमें शाहिद ने बताया अभी कुछ खास खुशखबरी नहीं है. अंक तालिका पे भारत का स्थान अभी कुल मिलाकर 9 मेडल्स के साथ बना हुआ है, जिसमें 1 गोल्ड है हमारे पास, एंड ऑफ कोर्स 7 कुल मिलाकर जो मेडल्स हमारे पास आए हैं वो रहे हैं सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स भी. सो 9 मेडल्स, उम्मीद करते हैं शाहिद यहां से और बढ़त मिलेगी हमें. फिलहाल के लिए शाहिद और मुझे साक्षी को दीजिए इजाजत. हम आपसे मुलाकात करेंगे सुबह 11:30 बजे एक बार फिर से.

0: आईजी नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ दोस्तों इस वक्त मौजूद हैं शाहिद आजमी एंड वी ब्रिंगिंग यू द लेटेस्ट अपडेट्स एट और घड़ी में बज गए हैं 12:30 और आपको हम देने वाले हैं कि एशियन गेम्स 2026 की पिछले एक घंटे में क्या क्या इवेंट्स में क्या क्या घटित हुआ है। तो सबसे पहले बड़ी खबर आपको ये देते हैं वेट लिफ्टिंग की दुनिया में, जहाँ मीराबाई चानू ने कमाल कर दिया। जी हाँ, शी हैज़ ब्रॉट इंडिया द कवेटेड सिल्वर। उम्मीद तो उनसे गोल्ड की रखी गई थी, लेकिन सिल्वर पदक यानी सिल्वर मेडल भारत के लिए वो लेकर आ गई। इस वक्त शी वॉज एबल टू पुट इट ऑन अ टोटल ऑफ 198 केजीज, विच वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ बेस्ट लिफ्ट फ्रॉम स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क। 198 किलो उठाने के बाद उनको आज यहां पर हमने देखा सिल्वर मेडल से नवाजा गया। आपको यह भी बता दें कि वेट लिफ्टिंग मेडल भारत के नाम 28 साल बाद आया, इसलिए एक हिस्टोरिक मेडल है। और उसके साथ ही साथ मीराबाई चानू के लिए ये उनका पहला मेडल है किसी भी रूप में एशियन गेम्स के अंदर। शाहिद
2: जी बिल्कुल, इसी मेडल से उनकी झोली खाली थी। मीराबाई चानू कर्णम मलेश्वरी के बाद दूसरी भारतीय वेटलिफ्टर बन गई जिन्होंने ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, सभी इन तमाम बड़ी प्रतियोगिताओं में पदक जीता है। आज वेटलिफ्टिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। जी हाँ, चीन की सॉन्ग गुम ने क्लीन एंड जर्क में 121 किलोग्राम वजन उठाकर कुल 215 किलोग्राम के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है।
1: राइट, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू कबड्डी, जहां पर हमने देखा कि भारतीय महिलाओं ने ईरान को 37-23 से हरा दिया कबड्डी वुमेन्स टीम ग्रुप ए में। और इसके बाद उन्होंने अपनी जगह, मतलब दोनों ही टीमों ने, क्योंकि ये 4-4 अंकों पर इस ग्रुप में आके एक साथ टाइड हो गए, तो दोनों ही टीमों ने अपनी जगह सेमीफाइनल बना ली है। वहीं मेन्स कबड्डी की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से भारतीय मेन्स कबड्डी टीम ने बांग्लादेश के ऊपर पूरी तरीके से दबदबा जारी रखा और 48-25 से बांग्लादेश को भी हरा दिया। अब नेक्स्ट भारतीय मेंस कबड्डी टीम इज गोइंग टू बी अप अगेंस्ट चाइनीज तेपाई इन इट्स फाइनल ग्रुप स्टेज गेम।
2: जी साक्षी, एक और शूटिंग से खबर दे देते हैं, जहां थोड़ा सा उम्मीद थी वो उम्मीद मध्यम पड़ गई। महिलाओं के स्कीट इवेंट में राजा ढिल्लो के बाहर होने के साथ ही भारत की पदक की उम्मीदें समाप्त हो गई। राजा चौथे स्थान पर रही थी, इस वर्ग का गोल्ड चीन की जियांग इतिंग ने जीता। वहीं रजत पदक थाईलैंड और कांस्य पदक कजाकिस्तान की शूटर ने अपने नाम किया है।
1: Right, and a quick update to be coming from the world of hockey also, where we carry on to see India's domination on Thailand. India presently leading with 13 goals, whereas Thailand has not even been able to open their account in this game in the name of goals. Bharat ki taraf se

0: दीपिका, लाल रिम सयामी, साक्षी राणा, पिसल रुतजा और नवनीत कौर कुछ ऐसे नाम रहे जिन्होंने भारत को आज गोल्स करके इस मैच में दिया है. और जिस तरह से ये मैच जा रहा है, उम्मीद ये करेंगे कि भारत को इसको बहुत कंफर्टेबली इन अ डोमिनेटिंग मैनर जीत लेना चाहिए.
1: जी बिल्कुल, विश्वास की बात की तो विश्वास की बात करते हैं एशियन गेम 2026 में भारतीय स्क्वैश की. जी हाँ, अभय सिंह ने पुरुष एकल में शानदार आगाज किया. उन्होंने थाईलैंड के अरकादेत को लगातार 3 गेमों में 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली. अभय सिंह अब राउंड ऑफ 16 में कल श्रीलंका के रविंदु के खिलाफ खेलेंगे. खास बात यह भी बता दें कि एशियन गेम्स से एले 28 यानी 2028 में जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक होने वाला है उसके लिए स्क्वैश के लिए कोटा स्थान भी जुड़ा हुआ है. उधर तन्वी खन्ना ने दक्षिण कोरिया की डामी किम को सीधे गेमों में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है.
0: राइट, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द वन ऑफ द बेस्ट न्यूज जो आज हमें दिन की शुरुआत में मिली थी. जय मीना सेन सॉफ्ट टेनिस, हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल इन सॉफ्ट टेनिस एट द एशियन गेम्स. यस, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करवाया. वो हार गए थे ताकुया कुरोसाका से 2-4 इन द सेमीफाइनल, लेकिन फिर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट है क्योंकि भारत को आज से पहले कभी भी सॉफ्ट टेनिस में कोई भी मेडल नहीं मिला है. और वो ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए भारत के लिए जिन्होंने सॉफ्ट टेनिस में एशियन गेम्स में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया.
1: जी बिल्कुल, इधर रोइंग की तरफ चलते हैं. लाइटवेट पुरुष डबल स्कल्स हीट में उज्जवल कुमार सिंह और रोहित चौथे स्थान पर है और फाइनल ए के लिए क्वालिफाई कर लिया है. लाइटवेट पुरुष सिंगल्स स्कल्स हीट में अजय त्यागी चौथे स्थान पर है. अब वो फाइनल में बी यानी फाइनल बी में हिस्सा लेंगे.
0: Right, and a quick update from the world of boxing also, ki Ankush Pangal has advanced to the round of 16 with a convincing 5-0 unanimous decision victory over Hamsa Bogel. Aapko bata de ki Ankush was able to completely dominate and command his opponent in this game.
1: आपको बता दें टेबल टेनिस से खबर, हरमीत देसाई शशिनी घोरपड़े ने मिक्स डबल्स के राउंड ऑफ 2 में मालदीव के मोहम्मद इस्माइल और फातिमित अली को 3-2 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की कर ली है.
0: राइट, एंड अ वेरी क्विक अपडेट बिफोर वी लीव फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट के साथ आप लोगों के साथ बता दें कि मेडल टैली में भारत की पोजीशन अभी 9वें स्थान पर है. कुल मिला के भारत के अब मेडल्स हो चुके हैं 11, जिसमें से एक गोल्ड है जो हमें क्रिकेट की दुनिया से आया, 5 सिल्वर है, 4 शूटिंग में से और 1 वेट लिफ्टिंग में जो आज मीरज भाई चानू लेकर आई, 5 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं जो इसमें से 4 शूटिंग्स में से शूटिंग में आए हैं, 1 मिक्स मार्शल आर्ट से आया है और तीसरा जो कहते हैं ना ब्रॉन्ज वो सॉफ्ट टेनिस की दुनिया से आया है, मेकिंग इट टोटल ऑफ राइट नाउ 5 ब्रॉन्ज मेडल्स फॉर इंडिया. सो दैट पुट्स आवर टोटल टैली एट 11 मेडल्स एंड वी आर ऑन द 9th पोजीशन. उम्मीद करते हैं कि भारत यहां से और धीमे धीमे करके ऊपर चढ़ेगा और मेडल्स आते रहेंगे. फिलहाल के लिए मुझे यानी साक्षी मांडवाल और शाहिद को दीजिए इजाजत. आपसे जुड़ेंगे दोस्तों 1 घंटे बाद एक बार फिर से आकाशवाणी के माध्यम से, ब्रिंगिंग यू द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स. थैंक यू.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल। मेरे साथ इस वक्त हैं शाहिद आजमी जी। एंड द बिग न्यूज दैट वी ब्रिंगिंग फॉर ऑल आर लिसनर्स राइट नाउ इज दैट भारत ने चाइना को मेंस टीम सेमीफाइनल्स के दूसरे मैच में जी हाँ हरा दिया है। सात्विक साई रेड्डी एंड चिराग शेट्टी मेड अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट अगेंस्ट चाइनाज लियांग वेकिंग एंड वैंग चैंग, डिफीटिंग देम इन स्ट्रेट सेट्स 2-0। वेल, आपको यह भी बता दें कि इसी मेंस टीम सेमीफाइनल्स का जो पहला मुकाबला हुआ था उसमें लक्ष्य सेन का सामना हुआ था शी यू क्वी से, जहां पर लक्ष्य सेन उनसे सीधे से सेट्स में यानी 21-16, 21-18 हार गए थे। लेकिन उसके बाद हमारे भारत के सात्विक साई रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जो कमबैक किया है, इट हैज हेल्प्ड इंडिया टाई द स्कोर्स फॉर नाउ, और शुड आई से लेवल द स्कोर्स विद चाइना फॉर नाउ 1-1।
2: बिल्कुल साक्षी, मुकाबला रोमांच की प्रकाष्ठा तक पहुंच गया। बैडमिंटन है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन शानदार वापसी की है जैसा आपने बताया। स्क्वैश की

0: कर लेते हैं। स्क्वैश में भारत की शानदार शुरुआत देखने को मिली है। स्क्वैश के सिंगल्स में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। वीर चौटरानी ने पुरुष सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में श्रीलंका के वकील को 3-0 से हराया। उन्होंने मुकाबला 11-8, 11-3, 11-3 से अपने नाम किया। वहीं तन्वी खन्ना ने भी महिला सिंगल्स राउंड ऑफ 32 में दक्षिण कोरिया की किम दामी को सीधे गेमों में 3-0 से मात दी। स्कोर रहा 11-5, 11-7, 11-5। वहीं अभय सिंह ने पहले ही शुरुआती मुकाबला जीतकर अगले दौर में जगह पक्की कर ली है।
1: Right, and the other big news that we come to you with is from the world of hockey, जहां भारत ने थाईलैंड को एक बहुत ही dominating और commanding तरीके से 20-1 से हरा दिया in the women's pool B clash at the Gifu Prefectural Green Stadium. भारत की तरफ से दीपिका लीड स्कोरर रही और उसके बाद रुतुराज पिसल और नवनीत कौर ने भी 3-3 गोल भारत के नाम दागे। अगर हम बात करते हैं थाईलैंड की, तो थाईलैंड की तरफ से जो इकलौता गोल उनके खाते में आज आया, वो आया सुपानसा समानसो की तरफ से, who was able to convert a penalty corner. Well, for all our listeners, आपको ये भी बता दें कि अब इसके बाद भारत का मुकाबला होगा रविवार को सिंगापुर से, where they will be playing their final pool B match basically against Singapore on Sunday शायद।
0: साक्षी, एक और उम्मीद की बात करता हूँ, उम्मीद बनी टूट गई। एशियन गेम 2026 के पुरुष स्कीट फाइनल में रणजीत सिंह नरूका ने 25 का स्कोर किया और चौथे स्थान पर है। मामूली अंतर से वो पदक की जो दौड़ थी वहां से, यानी पोडियम फिनिश करने से चूक गए। इस वर्ग का गोल्ड मेडल कतर ने जीता, जबकि सिल्वर चीन और ब्रॉन्ज मेडल चीनी ताइपे के नाम रहा। वहीं अनंजीत सिंह, जिन्होंने पिछले एशियन गेम्स में रजत पदक जीता था, इस बार पदक से जरूर चूक गए। हालांकि उनके पास वापसी का शानदार मौका अभी बचा हुआ। अनंजीत सिंह नरूका कल मिश्रित टीम स्पर्धा में एक बार फिर एक्शन में नजर आएंगे।
1: Right, and a quick recap of what has transpired in the day on this today. Kehna chahiye Asian Games 2026 mein to Mirabai Chanu weightlifting ke andar hamare liye lekar aayi aaj silver medal by lifting a total of 198 kgs, which was a combination of her best lift in snatch and then clean and jerk category. Uske saath hi saath ek aur bahut achhi aur bahut badi khabar jo humne aapko di hai, wo hai soft tennis ki duniya se, jahan Jay Meena created history by winning India's first ever medal in soft tennis at the Asian Games. He won the bronze medal by losing of course to Takuya Karusa Katupor in the semi-final, lekin apne aap mein ye ek bahut badi jeet thi Shahid, to get the first medal ever for India in Asian Games in soft tennis.
0: Bilkul badi khabar thi. Rowing mein bhi Bharat ke liye achhi khabar aa rahi hai, jahan par purushon ke quadruple sculls mein Arvind कुलदीपिंदर, नवदीप और जकार की चौकड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने हीट्स में 6:18.62 का समय निकालते हुए फाइनल में जगह बनाई।
1: राइट, अब आपको खबर देते हैं कबड्डी की दुनिया से, जहां पर इंडियन मेंस कबड्डी टीम ने आज बांग्लादेश को 48-25 से हरा कर अपने लिए और अपने स्थान को और ज्यादा स्ट्रांग बना लिया है। बिकॉज अब भारत का अगला मुकाबला होने वाला है चाइनीज तैपेई के खिलाफ इन इट्स फाइनल ग्रुप स्टेज गेम, जो कि होगा कल। लेकिन सबसे खूबसूरत और अच्छी बात यह रही है कि भारतीय मेन कबड्डी टीम का यह तीसरी स्ट्रेट विक्ट्री थी इस कैंपेन में, और कल उनका होगा आखिरी मुकाबला चाइनीज तैपेई के खिलाफ। वहीं भारत की महिला कबड्डी टीम ने भी आज ईरान को 37-23 से वुमेन्स टीम ग्रुप ए के मैच में हरा दिया, क्योंकि ये दोनों ही टीम्स के अंक 4-4 पॉइंट्स पर अब एक साथ आकर लॉक हो गए हैं इस ग्रुप में। तो दे बोथ हैव एंश्योर्ड देयर सेमीफाइनल स्पॉट्स नाउ।
0: जी बिल्कुल, खबरें जारी रहेंगी इस जो अपडेट है इसमें अब इतना ही। लेकिन हाँ, ये बता दें कि बैडमिंटन का रोमांच बना हुआ है अगले घंटे, हालांकि 2:30 पर हम नहीं मिलेंगे, 2:30 पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और साक्षी मांडवाल को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए बड़ा खूबसूरत लिखा है, आइए सुनते हैं।
2: रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए।
3: क्या बात है, रास्ते कभी खत्म नहीं होते,
2: बस चलने का हौसला होना चाहिए।
3: जी, इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें सबसे पहला संदेश मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और संजय नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश से वारिस अली खान, इस्लामुल निशा शकील, अहमद शहनाज खान और दानिश।
2: कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
3: श्रोताओ, हमेशा की तरह हमारा आभार आप सबको संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं ये भी जानिए कि अगले एपिसोड में एक बेहद रोचक आविष्कार की कहानी।
2: जी हाँ श्रोताओ, ऐसा तो है नहीं कि अतीत में या पुराने समय में लोगों को बुखार नहीं आता था। जी हाँ, आता जरूर था, उनका शरीर भी गर्म होता था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता था कि शरीर है कितना गर्म।
3: जी, तो आज हम आपको उमंग कार्यक्रम के द्वारा ले चलेंगे प्राचीन काल के एक ऐसे युग में जहाँ न कोई ट्रेन है और न जहाज। अजीब सा दृश्य होता होगा
2: जी।
3: चिकित्सक मरीज के माथे पर हाथ रखकर कहते होंगे, बुखार तो है, लेकिन श्रोताओं, ये ऐसी बात हुई जैसे कोई दुकानदार बिना तराजू के कह दे लगता है 5 किलो होगा।
2: तो आइए चलते हैं लगभग 400 साल पीछे, सन 1592 के आसपास। इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने एक ऐसा उपकरण बनाया जिसे आज के थर्मामीटर का शुरुआती पूर्वज माना जा सकता है,
3: और इस उपकरण को थर्मोस्कोप कहा गया
2: जी।
3: आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। तो उन्होंने ये किया था कि उन्होंने कांच की एक नली बनाई। इस नली के ऊपरी हिस्से में हवा बंद रहती थी और नीचे का हिस्सा पानी में डूबा रहता था।
2: तो श्रोता, होता ये था कि जब कांच का बल्ब गर्म किया जाता था तो अंदर की हवा फैलती थी और तापमान के अनुसार पानी का स्तर ऊपर नीचे होता था। इस तरह इस शुरुआती यंत्र से बस इतना ही पता चलता था कि तापमान बढ़ा या घटा है, इसमें कोई निश्चित संख्या का पैमाना नहीं था।
3: अभी एक बहुत बड़ी समस्या बाकी थी। ये यंत्र बता तो देता था कि चीज गर्म हुई या ठंडी
2: जी,
3: लेकिन ये नहीं बताता था कि कितनी गर्म या कितनी ठंडी।
2: बिल्कुल।
3: फिर आया 17वीं शताब्दी का दौर। बहुत से वैज्ञानिकों ने तापमान मापने के लिए अलग अलग तरह के उपकरण बनाए
2: जी,
3: लेकिन अब तक कोई एक निश्चित पैमाना नहीं था। किसी के थर्मामीटर पर एक संख्या तो दूसरे के थर्मामीटर पर दूसरी संख्या, बड़ी दुविधा थी।
2: फिर इस कहानी में प्रवेश होता है एक महान आविष्कारक का, जिसका नाम था डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट। उन्होंने पाया कि पारा या मरकरी तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील है। हल्के ताप पर भी पारा प्रतिक्रिया देता है, यानी फैलता है या सिकुड़ता है। सन 1724 में फारेनहाइट ने अपना तापमान का पैमाना प्रकाशित किया और तापमान को संख्याओं में व्यक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
3: श्रोताओ, ये क्रांतिकारी खोज थी। अब डॉक्टर निश्चित रूप से कह सकते थे कि मरीज के शरीर का तापमान कितना है
2: जी,
3: और यहीं से तापमान की भाषा बदल गई। अब गर्मी और ठंडक सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं रही, वह मापने योग्य वैज्ञानिक मात्रा बन गई
2: जी।
3: इससे चिकित्सा करने के तरीकों में भी भारी असर पड़ा।
2: लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ वर्षों बाद स्वीडन के वैज्ञानिक एंडर्स सेल्सियस ने सन 1742 में एक और सरल पैमाना प्रस्तावित किया, जिसे हम सेल्सियस स्केल कहते हैं। इस पैमाने में पानी के जमने और उबलने के बिंदुओं को आधार बनाया गया।
3: तो श्रोताओ, अब दुनिया के पास तापमान को मापने की एक व्यवस्थित भाषा थी
2: जी।
3: अब थर्मामीटर प्रयोगशालाओं से निकलकर अस्पतालों, घरों और मौसम विज्ञान विभाग तक पहुंच गया।
2: फिर आया डिजिटल युग, पारे वाले थर्मामीटर की जगह इलेक्ट्रॉनिक सेंसर आए
3: जी।
2: अब कुछ ही सेकंड में तापमान स्क्रीन पर दिखाई देने लगा, और आज तो हमारे पास ऐसे डिजिटल थर्मामीटर हैं जो बिना छुए तापमान पता कर सकते हैं।
3: तो है ना श्रोताओं, बेहद रोचक। जरा कल्पना कीजिए, एक समय इंसान हाथ लगाकर अनुमान लगाता था, और आज मशीन पलक झपकते ही बता देती है
2: जी।
3: यही तो विज्ञान की खूबसूरती है
2: जी। एक छोटी सी जिज्ञासा से शुरुआत होती है
3: कि तापमान या गर्मी कितनी है,
2: और फिर सदियों की खोज, प्रयोग और सुधार के बाद मनुष्य वहां पहुंचता है जहां वो

0: उस तापमान को एक संख्या में पढ़ सकता है।
1: तो श्रोताओं, अगली बार जब आप थर्मामीटर को हाथ में लें तो याद रखिएगा, यह सिर्फ एक छोटी सी मशीन नहीं है, इसके पीछे गैलीलियो का प्रयोग है, फ़ारेनहाइट का पैमाना है और सेल्सियस की वैज्ञानिक सोच है और सदियों की मानव जिज्ञासा है। यही तो विज्ञान की सुंदर यात्रा है।
0: अनुमान से प्रमाण तक, अनुभव करने से मापने तक और प्रश्न से आविष्कार तक।
1: जी, और प्रश्न से आविष्कार तक। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी और अच्छी लगी हो तो जरूर संदेश भेजिएगा। अब सुनिए आज का प्रश्न। आपको पता करना है कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम और शीर्षक है वी आर गोइंग टू द जू।
0: इस कार्यक्रम में गीत, संगीत और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से बच्चों को चिड़ियाघर की सैर कराई गई है और कई पशु पक्षियों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है। पशु पक्षियों की ध्वनि भी बच्चों को सुनाई गई है जिससे श्रवण आनंद और अधिक बढ़ जाता है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: ओ यस।
2: ऑल राइट, सो टेल मी, व्हाट डू यू सी इन अ जू?
3: टाइगर, लायन,
2: यस,
3: monkey, birds of different kind,
2: very nice,
3: camel, giraffe, and so on.
2: Oh wow. So here is a child like you who wants to go to a zoo. Now let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
3: Ready.
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.
3: The monkeys swing and climb.
2: They know it's feeding time.
3: They know it's feeding time.
2: The polar bear and seals.
3: The polar bear and seals.
2: Enjoy their fishy meals.
3: Enjoy their fishy meals.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The snakes all slide along.
3: The snakes all slide along.
2: The skunk just makes a pong.
3: The skunk just makes a pong.
2: The tiger gives a roar.
3: The tiger gives a roar.
2: He wants to eat some more.
3: He wants to eat some more.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: So children, you all have listened to this poem just now. Hope you have enjoyed, isn't it?
3: Yes!
2: All right. So now

0: environment as well. But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम वी आर गोइंग टू द जू।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम चींटी और हाथी।
1: भाषा शिक्षण के उद्देश्य से निर्मित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए और सबकी प्रतिभाओं और योग्यताओं का सम्मान करना चाहिए।

जंगल में एक चींटी रहती थी। वो रोज सुबह भोजन की तलाश में चल पड़ती थी। परिवार की सभी चींटियां उसके पीछे पीछे चलती।

जंगल के पेड़ पौधों को तोड़ता। कभी कभी हाथी अपने सूंड में पानी भरकर लाता और जानवरों पर डाल देता। जंगल के जानवर उससे बहुत परेशान रहते। हाथी की एक बुरी आदत और भी थी। जहां कहीं भी वो चींटियों को देखता, कुचल देता। चींटी ये सब देखती और दुखी होती।

0: एक दिन चींटी ने हाथी से कहा,
1: तुम दूसरों को बहुत सताते हो, ये बात ठीक नहीं।
0: हाथी बोला,
2: चुप रहो, मैं चाहे जो करूं, तुम बहुत छोटी हो, ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी कुचल दूंगा। हाँ
1: चींटी चुप।

0: हाथी इधर उधर घूम रहा था। तभी चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी।
1: Meow, meow, meow.

0: पर उसकी परेशानी किसी तरह भी कम न हुई। तब चींटी बोली,
1: परेशान क्यों हो रहे हो? तुम भी तो दूसरों को बहुत सताते हो।
0: हाथी बहुत दुखी हो गया। वो बोला,
2: मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी को कभी नहीं सताऊंगा।
0: चींटी को दया आ गई। वो हाथी की सूंड से बाहर निकल आई। फिर बोली,
1: किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए।

0: तो अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी और हाथी, और अब सुनते हैं एक और कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है देखो डाकिया आया।
1: ये कार्यक्रम पोस्ट ऑफिस, डाक सेवा और विशेषकर डाकिया के बारे में रोचक विवरण देता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि पुराने समय में डाक सेवा और एक डाकिया का कितना अधिक महत्व था। नई पीढ़ी के बच्चों के लिए ये जानकारी बहुत ही रोचक होगी।
2: चंचल इतनी चंचल है, बहुत बनाती बातें।

0: जाते
1: किसी एक दिन
2: एक दिन जब चंचल अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रही थी तो उसने देखा एक आदमी साइकिल पर सवार अपनी धुन में ट्रिन ट्रिन घंटी बजाते हुए उसके घर की तरफ आ रहा है। हाँ, कौन हो सकता है ये? इतने में अचानक उसका एक दोस्त बोल पड़ा, देखो डाकी आया। चंचल सोचने लगी, हाँ डाकिया, ये कौन? बस चंचल तो खेलना वेलना सब भूल गई, खेलना छोड़कर घर की तरफ गई। फिर क्या था, डाकिया अंकल के साथ बातूनी चंचल शुरू हो गई।
3: डाकिया अंकल,
4: आओ बेटा।
3: अरे मेरा नाम बेटा नहीं है, मेरा नाम चंचल है, चंचल। और आपको पता है मैं उस सामने वाले घर में रहती हूँ।
4: अच्छा चंचल, बेटे ये तुम्हारा पत्र है।
3: लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये चिट्ठी हम

0: घर पहुंचानी है।
1: इस पे बेटे आपका नाम और पता लिखा है, पता मतलब एड्रेस लिखा है आपका, उससे पता चलता है कि ये आपका पत्र है।
0: तो सब जगह आप ही चिट्ठी पहुंचाते हो?
1: नहीं, हर शहर में हमारे कर्मचारी हैं, हम यहाँ से उनके पास डाक मोटर से ट्रेन से हम उनके पास भेजेंगे, वहाँ वो आपको जिस एड्रेस पे चिट्ठी जानी हो उस एड्रेस पे वो चिट्ठी पहुँचाएंगे। हम सब जगह अपने देश में नहीं विदेश तक भी हम चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं। बेटे हमारा ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, सारी दुनिया में फैला हुआ है, कहीं पे एरोप्लेन से कहीं पे ट्रेन से हम सब जगह चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं।
0: नेटवर्क क्या होता है? अंकल मुझे कुछ समझ नहीं आया।
1: नेटवर्क हमारा विभाग जिसमें लाखों कर्मचारी काम करते हैं, गांव गांव शहर शहर सब जगह हमारे कर्मचारी हैं जो कि आपकी

0: कैसे काम करते हैं?
1: ये बेटा, हर जगह से डाक इकट्ठी करके और उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं, वहाँ से छटाई करके जिस जगह की वो डाक हो उस जगह के बैग में उसको बंद करके जहाँ रेल से जानी हो वहाँ रेल से भेजते हैं, जहाँ जहाज से जानी हो वहाँ जहाज से, हर जगह की डाक हम वहीं उसके एड्रेस पर भिजवाते हैं।
0: तो आप पूरी दुनिया में चिट्ठी पहुंचाते हो?
1: हाँ बेटे, आप चिट्ठी कहीं भी भेज सकते हो, हम हर जगह आपकी चिट्ठी पहुंचा देंगे। आपका उसमें नाम पता साफ साफ लिखा हो, शहर का नाम, पिन कोड वगैरह, अगर आप सही लिखते हैं, साफ लिखते हैं, तो आपका पत्र हर जगह पहुंच जाएगा।
0: आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी।
1: जी हाँ बेटे, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस काम के लिए, चाहे कैसा भी मौसम हो। आपकी चिट्ठी जिस दिन भी आपने लेटर बॉक्स में डाली उसी दिन से उस पे काम शुरू हो जाता है, चाहे धूप हो, बारिश हो, तूफान हो, हमें हर मौसम में ही काम करना होता है। आपकी चिट्ठी समय पर पहुंचाना ही हमारा काम है।
0: डाकिया अंकल, आप तो बहुत अच्छे हैं। तो फिर आज से हम दोनों दोस्त हुए, ठीक है?
1: हाँ बेटे, जब अगली चिट्ठी आएगी हम फिर मिलेंगे, अच्छे दोस्त हैं हम।
0: हाँ, जरूर मिलेंगे। धन्यवाद डाकिया अंकल।
1: धन्यवाद चंचल।
2: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: Hello and a very warm welcome to the live updates of the ongoing Asian Games 2026. हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए इस वक्त 3:30 बजे के कुछ खास अपडेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एशियन गेम्स. सबसे पहली बड़ी खबर आती है वुशु से, जहां पर रोशिबिना देवी ने 60 किलोग्राम की कैटेगरी में फाइनल्स में अपनी जगह दर्ज कर ली है. जी हाँ, नायरम रोशिबिना देवी सिक्योर्ड हर प्लेस इन द वुमेन 60 किलोग्राम फाइनल आफ्टर बीटिंग इंडोनेशियाज थाइनिया 2-0 in the semi-final. The Indian Wushu star will now compete for the gold medal in tomorrow's final, जो कि होने वाला है 23 सितंबर को. आपको ये भी बता दें कि इस विक्ट्री के बाद, यानी सेमीफाइनल से फाइनल में प्रवेश करने के बाद, भारत को एक और मेडल इस समय कंफर्म हो ही चुका है. अब वो कौन सा होने वाला है, वो सिल्वर होगा या गोल्ड होगा, ये तो 23 सितंबर को ही हमें पता चलने वाला है, यानी कल. लेकिन दिस इज अनदर वेरी गुड न्यूज कमिंग आवर वे राइट नाउ, राइट?
1: जी बिल्कुल, अच्छी खबर के बाद उम्मीद थी मीराबाई चानू के बाद ज्ञानेश्वरी देवी भी कमाल करेंगे, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाई. ज्ञानेश्वरी देवी ने 195 किलोग्राम वजन उठाकर जो महिलाओं का 53 किलोग्राम का मुकाबला था, आठवें स्थान पर रही. स्नैच में उन्होंने 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 108 किलोग्राम वजन उठाया. हालांकि उनके लिए बहुत खास नहीं था. उत्तर कोरिया की हॉन्ग क्योंग कॉन्ग ने 223 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता. इसके बाद चीन की जिन लाओ झाओ रही, उसके बाद थाईलैंड की सुचरिता खाम्बा का स्थान रहा है.
0: जी, और अब रुक करते हैं बैडमिंटन की तरफ, जहां पर आज हो रहे हैं मेंस टीम के सेमीफाइनल मैचेस, और इसमें सबसे पहला मुकाबला हुआ भारत के लक्ष्य सेन और दूसरी तरफ से चाइना के शी यू क्वी के बीच में. लेकिन चाइना के शी यू क्वी वॉज टू गुड फॉर लक्ष्य सेन टुडे, जिन्होंने लक्ष्य सेन को 21-16, 21-18 से स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया. लक्ष्य सेन कुड नॉट प्रूव टू बी अ मैच वर्दी ऑफ हिज ओपोनेंट टुडे. वहीं दूसरी तरफ जब अगला गेम शुरू हुआ, उसमें अगला मैच हुआ, उसमें सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना हुआ चाइना के लियांग वेकिंग और वैंग चैंग से. और उसमें द गुड थिंग वाज दैट द इंडियन पेयर ऑफ रांकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी वर एबल टू डिफीट द चाइनीज अपोनेंट्स 2-0, 21-11, 22-22, and thankfully this leveled the playing field for both India and China, because then the scores got tied at 1-1 from the first two matches. उसके बाद हम चले तीसरे मैच की ओर, जहां पर चाइना के ली शिफेंग ने आयुष शेट्टी को बड़ी आसानी से स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया 21-19, 21-13, thereby taking the lead overall to 2-1.
1: साक्षी, एक ऐसे मुकाबले की बात करते हैं जो बिल्कुल एक तरफा था. भारतीय महिला हॉकी के मुकाबले की बात करते हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड को 20-1 से शिकस्त दे दी. पूल बी में यह भारत की लगातार तीसरी जीत है. मुकाबले की सबसे बड़ी स्टार दीपिका सहरावत रही, जिन्होंने पेनाल्टी कॉर्नर पर शानदार ड्रैग फ्लिक के जरिए अकेले 9 गोल दागे. एक मैच में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। हम लेकर आ रहे आपके लिए घड़ी में बज रहे हैं 4:30 और इस वक्त के लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। मैं हूं साक्षी मांडवाल, मेरे साथ इस वक्त यहां पर है मौजूद शाहिद आजमी भी। और सबसे पहला अपडेट जो हम दोस्तों आपके लिए लेकर आएंगे वो है बैडमिंटन की दुनिया से। नॉट अ लॉट ऑफ ब्राइट चीयरफुल न्यूज फ्रॉम देयर बिकॉज इंडिया लॉस्ट टू चाइना 1-3 इन द मेंस टीम सेमीफाइनल एट द एशियन गेम्स 2026 एंड हैड टू सेटल इन फॉर द ब्रॉन्ज मेडल। सबसे पहला जो इसमें हुआ वो हुआ लक्ष्य सेन और शी यू क्वी के बीच में, जिसमें द चाइनीज अपोनेंट डिफीटेड लक्ष्य सेन 21-16, 21-18 एंड फ्रॉम देयर इंडिया रियली कुड नेवर गेट दैट मोमेंटम गोइंग बिकॉज द सेकेंड मैच सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इन दोनों ने अपने नाम कर लिया 2-0 से क्लीन सेट्स में टू लेवल इंडिया अप अगेंस्ट चाइना 1-1। लेकिन वंस अगेन व्हेन आयुष शेट्टी केम इनटू फेस ली शिफिंग, वहां पर ली शिफिंग हैड द बेटर ऑफ आयुष शेट्टी डिफीटिंग हिम इन स्ट्रेट सेट्स 21-19, 21-13, thereby putting China ahead of India 2-1। एंड फाइनली अर्जुन एंड हरिहरन वेंट डाउन 21-16, 17-21, 21-18।

0: 9 in the fourth match at the semi-final tie. By the way, India's bronze is only its second ever Asian Games medal in the men's team badminton event. Shahid, a disappointing day for our shuttlers.
1: जी बिल्कुल, बैडमिंटन से उम्मीद अच्छी थी, लेकिन हाँ ये भी था मजबूत प्रतिद्वंदी हमारे खिलाड़ी हैं। उशु की बात कर लेते हैं, एशियन गेम्स में दो बार मेडल जीत चुकी नौरेम रोशिबीना देवी, महिला 60 किलोग्राम सांडा सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की थानिया कुसुमांगतियास को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। रोशिबीना ने हांगझाऊ 2023 में सिल्वर मेडल और जबकि जकार्ता बालमबाग एशियन गेम्स 2018 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एशियन गेम्स में अपना तीसरा मेडल पक्का कर चुकी रोशिबीना अब कल होने वाले फाइनल में अपने पदक का रंग बदलना चाहेंगी, क्योंकि सिल्वर और ब्रॉन्ज पहले जीत चुकी हैं।
0: राइट, ही इज विशिंग हर ऑल द वेरी बेस्ट। कैनू स्प्रिंट की भी थोड़े से अपडेट्स लेके आपके लिए आ रहे हैं। इंडिया मेंस कयाक 4-500 मीटर टीम फिनिश थर्ड इन द हीट्स एंड क्वालिफाइड फॉर द फाइनल ए। अरुण सिंह, हर्षवर्धन सिंह, शक्तावत, वरिंदर सिंह और नाउचा सिंह ओइनम are going to be representing India in the final A category. Wahi Megha Pradeep finished 5th in the women's canoe single 200 meter heats with a timing of 49.675 seconds and qualified for the semi-finals. Sonia Devi and Parvati Geeta ended 6th in the women's kayaks double 500 meter heats with a timing of 2 minutes 02.538 seconds. They have also qualified for the semi-finals. Wahi in the men's kayak double 500 meter heats, Chempa Dale, Satya Prakash, Prasanna Kumar and Prohit Baroy finished in the 5th spot and have qualified for the semi-finals. In women's canoe double 500 meter heats, Megha Pradeep and Neha Devi finished on the 5th spot also and qualified for the semi-finals.
1: जी, यहाँ पर शूटिंग की बात कर लेते हैं। हालांकि जो हमारी स्टार शूटर थी, चाहे मनु भाकर की बात करें, ईशा सिंह या सुरुचि, वो पदक की दौड़ से बाहर हुई, लेकिन स्कीट में बड़ी खबर आई। शूटिंग रेंज से भारत के लिए डबल जो ब्रॉन्ज मेडल की खबर आई है, उसमें स्कीट टीम इवेंट में भारतीय निशानबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला और पुरुष दोनों टीम स्पर्धाओं में कांस्य पदक अपने नाम कर लिए। सबसे पहले बात महिला स्कीट टीम की करते हैं, राजा ढिल्लों, परिनाश धालीवाल और महेश्वरी चौहान की तिगड़ी ने शानदार निशानेबाजी करते हुए 331 अंक हासिल किया और भारत की झोली में कांस्य पदक डाल दिया। और इसके बाद पुरुष स्कीट टीम ने भी कमाल कर दिया। ओलंपियन अमरजीत सिंह नरुका, महराज अहमद खान और भौतिक सिंह ने मिलकर 346 अंक हासिल किया और भारत को एक और कांस्य पदक दिला दिया।
0: जी, और टीटी की दुनिया से भी आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आ रहे हैं कि दोनों ही मिक्स डबल पेयर्स हमारे जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सबसे पहले हरमीत देसाई और यशस्वनी घोरपड़े, उन्होंने हरा दिया 3-1 से हांगकांग के यू क्वान तो और विंग लैम्प को, एंड देयर बाय दे हैव बुक्ड अ प्लेस एंड मूव्ड ऑन टू द लास्ट एट। वहीं मनु शाह एंड दिया चिटाले ने भी इन द मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल्स में मालदीव्स के अहमद मूसा और नजीम एशद को हरा कर लास्ट एट में अपनी जगह बना ली टेबल टेनिस में।
1: यहाँ मीरा बाई चानू ने जो अपनी पदकों की झोली है, जहां पर एशियाड का कोई मेडल नहीं था, उसको भी उन्होंने भर दिया है। जी हाँ, मीरा बाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग इवेंट में कुल 98 किलोग्राम, जिसमें 87 किलोग्राम स्नैच और 111 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क का वजन था, उसे उठाकर सिल्वर मेडल जीत लिया और एशियन गेम्स में जो मेडल का सूखा था वो खत्म कर दिया।
0: राइट, और हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे आज मेडल टैली की और किस तरह से भारत के पहला मेडल भारत को मिला शाहिद इन सॉफ्ट टेनिस एवर इन द एशियन गेम्स, अ वेरी बिग अचीवमेंट बाय द इंडियंस आउट देयर।
1: जी बिल्कुल, बिग अचीवमेंट है, अभी अचीवमेंट और भी आना बाकी है जैसे जैसे एशियन गेम्स बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त की अपडेट तक, यानी आज की इस अपडेट के लिए आज तक, अब यहीं पर मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और साक्षी मांडवाल को अनुमति दीजिए। अब से ठीक 1 घंटे बाद 5:30 पर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: நேர்களே, ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த கள நிலவரம் கேட்டீர்கள்.
4: இனிய இசை மெட்டுக்களோடு இணைந்திருக்கிறீர்கள். ஆகாஷ்வாணி திருநெல்வேலி வானொலியின் மத்தியலை 1197 கிலோ ஹெட்ஸ் மற்றும் பண்பலை 102.6 மெகா ஹெட்ஸ்.
5: Ah ha!

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट के साथ हाजिर हुए मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ साक्षी मांडवाल हैं। स्वागत है दोस्तों आप सबका। बात सबसे पहले आज करेंगे हॉकी की, जहां भारतीय महिला टीम जीत के रथ पर सवार है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड को 20-1 से करारी शिकस्त दे दी। पूल बी के मुकाबले में भारत के लगातार तीसरी जीत है। मुकाबले की बात करें तो सबसे बड़ी स्टार दीपिका सहरावत रही, जिन्होंने पेनाल्टी कॉर्नर पर शानदार ड्रैग फ्लिक के जरिए अकेले 9 दाग गोल दागे और एक बड़े जिस तरह से भारत की जो बड़ी जीत थी उसमें एक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। सर्वाधिक किसी एक मुकाबले में गोल करने का जो एक रिकॉर्ड है वो अपने नाम कर लिया है।
2: Gee, and the next update we bring to you is from the world of table tennis, where both the Indian mixed doubles pairs won their respected rounds and also advanced to the last eight. सबसे पहले बात करते हैं हरमीत देसाई और यशस्वनी घोरपड़े की, जिन्होंने मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल्स में 3-1 से जीत हासिल करी हांगकांग के यू क्वान तो और विंग लैम के ऊपर, एंड देयर बाय दे एडवांस्ड टू द लास्ट एट। उसके बाद मनु शाह एंड दिया चितले स्टॉर्म्ड इनटू द मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल्स विद द डोमिनेंट स्ट्रेट गेम्स विक्ट्री over the Maldives, Ahmed Musa and Nazim Eshhat. Iske saath hi, this was a very commanding performance for them to now move on into the last eight, where they will be facing Lin Shidong and Kuai Man of China, which is going to be faced by Harmeet and Yashaswini, while Dia and Manish will be facing Wong Chung एंड डू है ऑफ चाइनीज टेपाई।
1: श्रोताओं, शूटिंग के बारे में बता देता हूं, हालांकि आज के दिन की शुरुआत भारत के लिए कोई बहुत खास नहीं रही, निराशाजनक रही। परिनाज धारीवाल, महेश्वरी चौहान और रायजान ढिल्लो ने महिला स्की टीम स्पर्धा में उसके बाद शानदार प्रदर्शन किया और पदक जीता। लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, वहां मनु भाकर 579 अंकों के साथ व्यक्तिगत फाइनल में पहुंचने वाली एकलौती भारतीय रही, लेकिन वो भी फाइनल में पोडियम फिनिश नहीं कर पाई। मनु भाकर वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल

0: फाइनल में मेडल जीतने से चूक गई और 181.1 के स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर ही भारतीय तिकड़ी परिनाश धालीवाल, महेश्वरी चौहान और रायजा ढिल्लों ने महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में कांस्य पदक भारत की झोली में डाला। वहीं अगर बात करें परिणास की तो और रायजा ढिल्लों की जो 125 में से 111 अंक जुटाए, जबकि महेश्वरी चौहान ने 109 अंक अपने नाम किए। कुल भारत ने 331 अंक जुटाते हुए कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा बात करें ओलंपियन अनंत जीत सिंह नरुका, महराज अहमद खान और भोगेश सिंह ने मिलकर कुल 346 अंक हासिल किया और पुरुषों का स्कीट का जो टीम इवेंट का कांस्य पदक भारत की झोली में डाला।
1: जी, एंड नाउ वील मूव ऑन टू कनू स्प्रिंट, वेयर इंडियाज मेन कयाक्स 4-500 मीटर टीम फिनिश थर्ड इन द हीट्स एंड क्वालिफाइड फॉर द फाइनल ए। मेघा प्रदीप फिनिश्ड फिफ्थ इन द विमेंस कनू सिंगल 200 मीटर्स हीट विद द टाइमिंग ऑफ 49.675 सेकेंड्स एंड क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल। सोनिया देवी एंड पार्वती गीता एंडेड सिक्स्थ इन द विमेंस कयाक डबल 500 मीटर्स हीट्स विद 2 मिनट्स 2.538 सेकेंड्स। दे हैव ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स। इन मेन्स कयाक डबल 100 मीटर हीट्स चंपा देल, सत्य प्रकाश, प्रसन्ना कुमार एंड प्रोहित बरोई फिनिश्ड ऑन द फिफ्थ स्पॉट विद द टाइमिंग ऑफ 1 मिनट 41.141 सेकेंड्स एंड क्वालिफाइड फॉर द सेमीज। इन वुमेन्स कनू डबल 500 मीटर हीट्स मेघा प्रदीप एंड नेहा देवी फिनिश्ड ऑन द फिफ्थ स्पॉट एंड ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स।
0: स्क्वैश की बात कर लेते हैं, भारत की शानदार यहां पर शुरुआत हुई है। स्क्वैश सिंगल्स में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ जो अपना अभियान शुरू किया, वीर चोटरानी ने पुरुष सिंगल्स में राउंड ऑफ 32 मुकाबले में श्रीलंका के वकील को 3-0 से हराया। उन्होंने मुकाबला 11-8, 11-3, 11-3 से अपने नाम किया, जबकि तन्वी खन्ना ने महिला सिंगल्स में राउंड ऑफ 32 का जो मुकाबला था वहां दक्षिण कोरिया की किम दामी को सीधे गेमों में 3-0 से मात दी। स्कोर रहा 11-5, 11-7, 11-5। वहीं अभय सिंह ने भी अपने शुरुआती मुकाबलों में जीत कर जो जीत उनकी रही उसके बाद अगले दौर में जगह बना ली है।
1: Right, and now bringing in the big news from the world of Wushu, where all the fans of Roshibina Devi will be expecting to see her performance tomorrow, which is of course going to be in the 60 kg final category. Ji haan, Roshibina Devi secured her place in the women's 60 kg final after beating Indonesia's Thania Kusumanangityas 2-0 in the semi-final. The Indian Wushu star will now compete for the gold medal in tomorrow's final, which is on the 23rd September. और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि वुशु में अब भारत को एक मेडल भी अश्योर हो चुका है। वो कौन सा होने वाला है, शायद सिल्वर या फिर गोल्ड, ये तो हम सबको कल ही पता चलेगा।
0: जी बिल्कुल, कल पता चलेगा, लेकिन आज जिस तरह से मीराबाई चानू ने तहलका मचाया, वो सब ने देखा। हालांकि गोल्ड की उम्मीद थी लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंची। सिल्वर मेडल जीता जरूर, लेकिन एक अपसेट भी देखने को मिला, एक निराशा देखने को मिला। ज्ञानेश्वरी देवी 8वें स्थान पर रही, 195 किलोग्राम का वजन उठाया। महिलाओं की जो 53 किलोग्राम भार वर्ग की प्रतियोगिता थी उसमें 8वां स्थान उन्हें हासिल हुआ। उत्तर कोरिया की होंग योंग कॉन्ग ने 223 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद चीन की जिंगलांग झाओ का नंबर आता है, उन्होंने कांस्य पदक अपनी झोली में डाला।
1: Right, and do we have some updates to give from weightlifting? Because अभी तो आप मीराबाई चानू की बात कर ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम थोड़े और अपडेट्स भी देना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं। Well, but I will at the end of the day tell all our viewers की weightlifting में सबसे बड़ी खबर तो मीराबाई चानू की थी, लेकिन एक और अपडेट आ सकता है, वो है ज्ञानेश्वरी यादव के लिए भी। जी हाँ, लेकिन वहाँ से कोई खुशखबरी नहीं आने वाली है, क्योंकि ज्ञानेश्वरी यादव फेल टू लिफ्ट 105 kilograms in a first attempt in the clean and jerk round and later went on to successfully lift in her second attempt in the women's 53 kilogram category. So overall it was not a good day because she went out of the race for a top 3 finish. But iske sath hi quickly leaving our viewers with Bharat ki is samay ank talika pe standing kya hai. 13th position pe hai India with a total of 12 medals, which has one gold and of course we have 4 from shooting, which is in silver, 1 weightlifting, and then we have a total, okay, wrapping it up with 12 medals, which includes the one gold, hoping that India climbs up the position shayad once again back up.
0: Ji bilkul, hum ummeed karenge isi tarah Bharat ka jo karma badhta rahega. Filhal ab aapse mulaqat hamari hogi theek 6:30 tak, 30 minute par usse pehle mujhe Mohammad Shahid Azmi aur Sakshi Mandwal ko anumati dijiye. Namaskar.
2: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.

0: இதுவரை இணைந்திருந்தும் இறைச்சிந்தனையோடு இன்னிசை பாடல்களும் உலா வந்த பக்தி மாலை நிகழ்ச்சியோடு. இன்னும் சில நொடிகளில் நேயர்கள் கேட்கலாம் ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தினசரி கள நிலவரம்.
1: கேம்ஸ் 2026 ஐசி நகோயா.
2: स्वागत है दोस्तों आप सबका. घड़ी की सुई में ठीक 6:30 हो गए हैं. एशियन गेम्स पर अपडेट के साथ हाजिर हूं मैं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं साक्षी मांडवाल. सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बात करते हैं मुक्केबाजी की. मुकाबला एक ही था लेकिन भारत को वहां जीत मिली. जी हां, भारत के अंकुश पंघाल आज मुक्केबाजी स्पर्धा में सर्वसम्मति से हुए फैसले में जीत के साथ पुरुषों के 80 किलोग्राम का जो मुकाबला था फाइनल में, जो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं. पहली बार एशियाई खेलों में उतरे 21 वर्ष के राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक विजेता पंघाल ने बहरीन के हमसा वेंगेल को अंतिम, जिस तरह से मुकाबला था 16 का मुकाबला था उसमें 5-0 से जीत दर्ज की. यानी 5-0 से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराया. पिछले साल विश्व मुक्केबाजी कप में रजत पदक जीतने वाले अंकुश अब पदक पक्का करने के एक कदम दूर है. यानी वो क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के नेहरूज सालिमो से भिड़ेंगे.
3: जी शुक्रिया शाहिद. और आगे बढ़ेंगे वुशू की बात करते हैं दोस्तों. द बिग न्यूज़ दैट वी हैड ऑल बीन वेटिंग फॉर इज दैट रोशिबिना देवी हैज सिक्योर्ड हर प्लेस इन द वुमेन 60 किलोग्राम फाइनल आफ्टर बीटिंग इंडोनेशिया स्थानिया 2-0 इन द सेमीफाइनल. ये मुकाबला आज घटित हुआ और अब इसके बाद कल हम सब रोशिबिना देवी को देख सकते हैं फाइनल्स के मुकाबले में एंड होपिंग that she gets us the coveted gold. Well, ये तो समय ही बताएगा कल कि भारत के नाम कल वुशु में सिल्वर आ रहा है या गोल्ड. लेकिन रोशिबिना देवी को हर भारतीय की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अ बिग गेम टुमारो.
2: रोइंग की बात करते हैं साक्षी. रोइंग से भारत के लिए बेहद अच्छी खबर आ रही है. एशियन गेम्स में भारतीय रोअर्स ने 4 स्पर्धाओं में फाइनल में जगह बना ली है. पुरुषों के सिंगल स्कल्स में बलराज पवार ने 6:52.84 के समय के साथ हीट में तीसरा स्थान हासिल किया. वहीं पुरुषों के डबल स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी 6:15.63 के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही और फाइनल ए में जगह बना ली यानी पहुंच चुकी है. लाइटवेट डबल स्कल्स में रोहित और उज्जवल कुमार सिंह ने चौथा स्थान हासिल करते हुए फाइनल में जगह हासिल कर ली है. वहीं पर क्वार्टरपल स्कल्स में अरविंद सिंह, कुलेंद्र सिंह, नवदीप सिंह और जकार खान की टीम ने भी फाइनल में जगह बना ली है. अब भारतीय रोवर्स की नज़रें पदक पर हैं. डबल स्कल्स की जो मुकाबला है यानी फाइनल मैच जो है 24 सितंबर यानी कल खेला जाएगा.
3: राइट. और अब बैडमिंटन की बात कर लेते हैं. उम्मीद तो वैसे हमारे शटलर्स से आज बहुत ज़्यादा लगाई गई थी क्योंकि मेंस टीम सेमीफाइनल्स आज घटित हुए हैं. लेकिन इट वॉज आई वुड सी अ मिक्सड फिनिश बाय आर शटलर्स बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी फिनिश्ड विद द ब्रॉन्ज मेडल. येस, इंडिया लॉस्ट 1-3 टू चाइना इन द मेंस टीम सेमीफाइनल एंड द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 एंड हैड टू सेटल इन फॉर द ब्रॉन्ज मेडल. ऑल्सो दिस इज इंडियाज ये जो ब्रॉन्ज मेडल है ये भारत का सेकेंड एवर एशियन गेम्स मेडल है मेंस टीम बैडमिंटन के अंदर.

0: लेट्स मूव ऑन टू ऑल्सो गिविंग यू स्लाइट डिटेल्स ऑन हाउ द ऑल द मैचेस वेंट. सबसे पहला मैच हुआ था शी युकुई के और लक्ष्य सेन के बीच में, जिसमें शी युकुई डिफीटेड लक्ष्य सेन इन स्ट्रेट गेम्स, विनिंग 21-16, 21-18. बाद में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने नेक्स्ट मैच के अंदर एक कमबैक जरूर करवाया भारत को अगेंस्ट चाइनाज लियांग विकिंग एंड वैंग चैंग बाय डिफीटिंग देम इन स्ट्रेट गेम्स 2-0. बट दैट वॉज नेवर गोइंग टू बी इनफ बिकॉज ली शिफेंग देन लेटर बीट आयुष शेट्टी 21-19, 21-13. और इसके साथ ही चाइना ने 2-1 से अपनी बढ़त भी मना ली इन द मेन्स टीम सेमीफाइनल. एंड द फोर्थ मैच जो हुआ था अर्जुन और हरिहरन के बीच में, उसमें वंस अगेन दे वेंट डाउन 21-16, 17-21, 21-9. दे जस्ट वर नो फाइट टू देयर चाइनीज अपोनेंट्स एंड एज अ रिजल्ट चाइना डिफीटेड इंडिया 3-1 इन द मेन्स टीम सेमीफाइनल्स.
1: जी चीन की बात की तो चीन के बारे में बता दें, मेडल टेबल पर चीन अभी भी सबसे ऊपर बना हुआ, 48 गोल्ड, 20 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज समेत कुल 78 पदक जीतकर सबसे ऊपर बना है. जबकि जापान जो मेजबान है इस एशियन गेम्स का, 15 गोल्ड, 25 सिल्वर, 37 ब्रॉन्ज समेत 67 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर. वहीं दक्षिण कोरिया की बात कर लेते हैं, 8 गोल्ड, 8 सिल्वर, 25 ब्रॉन्ज समेत 41 पदक जीतकर तीसरे पायदान पर है.
0: जी और अब एक नजर भारत के ऊपर भी डाल लेते हैं कि वेयर एग्जैक्टली इज इंडिया स्टैंडिंग इन द मेडल टेबल. भारत की पोजीशन इस समय है 13th. कुल मिलाकर भारत के पास हैं 12 मेडल्स, जिसमें से एक गोल्ड आया है क्रिकेट की दुनिया से, द वुमेन्स क्रिकेट गेटिंग अस दैट गोल्ड यस्टरडे. 5 सिल्वर मेडल्स हैं, जिसमें 4 शूटिंग से आए, 1 वेट लिफ्टिंग से. 6 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं, जिसमें से 3 शूटिंग में आए, 1 मिक्सड मार्शल आर्ट में आया है, 1 सॉफ्ट टेनिस में आया है और 1 बैडमिंटन में. हियर इज होपिंग दैट इंडिया गोज ऑन टू एड मेडल्स, स्पेशली द कोवेटेड गोल्ड टू देयर किटी मोर एंड मोर इन द कमिंग डेज. लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास इस अपडेट में शाम को 6:30 बजे आप सबके लिए बस इतना ही था. आपसे एक बार दोबारा जुड़ेंगे दोस्तों शाम को 7:30 बजे विद ऑल द रैप अप ऑफ द एंटायर डे अपडेट एंड ऑल्सो गिविंग यू प्रीव्यू ऑफ द इवेंट्स लाइंड अप टुमारो. फॉर द मोमेंट इट्स मी साक्षी मांडवाल एंड शाहिद आजमी सेइंग गुड बाय.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट के साथ। आज की ये अंतिम अपडेट है, बात करेंगे आज जो दिन भर में उठा पटक हुई, कहीं अच्छा हुआ, कहीं लगा कि कुछ अच्छा और होना चाहिए था, कहीं उम्मीद बनी, कहीं उम्मीद टूटी, इसी पे बात करेंगे आज। क्या कुछ भारत के हाथ लगा, वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 किलोग्राम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का जहां मान बढ़ाया, वहीं शूटिंग में भारतीय पुरुष स्कीट टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, वहीं महिला इसकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। और सॉफ्ट टेनिस में पुरुष सिंगल्स में जय मीना ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा, ये सॉफ्ट टेनिस में भारत का पहला एशियन गेम्स पदक है। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने टीम स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इस तरह वेटलिफ्टिंग, शूटिंग, सॉफ्ट टेनिस, बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों और टीमों ने भारत की पदक की संख्या जो है उसमें इजाफा किया। वहीं कल भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, कई बड़े इवेंट होने वाले, कई पदक दांव पे लगे हैं। जी हाँ, एशियन गेम्स में 24 सितंबर को भारत की नजरें कई अहम मुकाबलों और पदक स्पर्धाओं पर रहेंगी। रोइंग में बलराज पवार सिंगल स्कल्स फाइनल में उतरेंगे, सतनाम सिंह और सलमान खान डबल स्कल्स फाइनल में चुनौती देंगे, महिला फोर लाइट वेट डबल स्कल और क्वाड्रपल स्कल्स में भी भारतीय नाविक पदक की दौड़ में बने रहेंगे। उशु में रोशिबीना देवी महिला 60 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में चीन की झांग शाओ के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए उतरेंगी। शूटिंग में आकाश भारद्वाज, कमलजीत, केदारलिंग बालकृष्ण 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत की चुनौती पेश करेंगे। वहीं स्कीट मिस टीम में परिणाथ धालीवाल और आनंदजीत सिंह नरुका भी उतरेंगे, यानी पदक के लिए उनकी जोड़ी भी मध्य मुकाबिल होगी। कैनो स्प्रिंट में पुरुष कयाक फोर और कैनो डबल 500 मीटर के फाइनल में भारतीय खिलाड़ी पदक के लिए उतरेंगे। टीम स्पर्धाओं में पुरुष कबड्डी का मुकाबला चीनी ताइपे से और महिला कबड्डी टीम का मुकाबला जापान से होगा। वहीं पुरुष हॉकी टीम कल दक्षिण कोरिया से जोर आजमाइश करेगी, या यूं कहें कि वहां जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। मुक्केबाजी की बात करें तो पुरुष 70 किलोग्राम में प्री क्वार्टर फाइनल में सुमित का मुकाबला अली कासिम हमदान अल सर्रे से होगा। वहीं मुक्केबाजी की महिला वर्ग में 51 किलोग्राम के राउंड ऑफ 16 में साक्षी रिंग में उतरेंगी, उनका सामना कजाकिस्तान की अलुआ बालिकबेवा से होगा। भारत की परवीन हुड्डा 65 किलोग्राम में उज्बेकिस्तान की मलिका नोजिमोवा से भिड़ेंगी। एथलेटिक्स की बात करें तो एथलेटिक्स में आशा इलंगो और निहारिका वशिष्ठ ट्रिपल जंप फाइनल में उतरेंगी। 100 मीटर में अनिमेश कुजूर और गुरिंदर सिंह भारतीय चुनौती पेश करेंगे, जबकि महिला 10,000 मीटर फाइनल में सीमा पर भी सभी की निगाहें बनी होंगी। कुल मिलाकर 24 सितंबर भारत के लिए कई खेलों में पदक की उम्मीदों से भरा होगा। कई खेलों में भारत की पदक पर निगाहें होंगी, खासकर अगर बात करें तो एथलेटिक्स में जो कल से मुकाबले शुरू हो रहे हैं, भारत के कई वहां पर जो खिलाड़ी उतरेंगे, साथ ही साथ कबड्डी, शूटिंग या हॉकी, कई जगहों पे पदक होंगे, यानी सभी की निगाहें इन खेलों पे लगी होगी। देखना होगा भारत कहां तक पहुंचता है, यानी भारत की जो चुनौती है वो कहां तक आती है, किन किन खिलाड़ियों को पदक मिलता है। लेकिन हाँ, आज का जो दिन था शूटिंग में देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत खास नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत की जो बड़ी खिलाड़ी हैं, बड़े जो नाम हैं, चाहे हम बात करें मनु भाकर की बात करें, सुरुचि सिंह की बात करें या ईशा सिंह की बात करें, वो सभी यहाँ पर नाकाम फिलहाल नजर आए।

0: कि 25 मीटर में अभी भी मनु भाकर को पदक जीतने की उम्मीद है। अगर आप पदक तालिका पर देखें तो सबसे ऊपर चीन 48 गोल्ड 20 सिल्वर 10 ब्रॉन्ज सहित 78 पदक जीतकर है, जबकि जापान 15 गोल्ड 25 सिल्वर 27 ब्रॉन्ज समेत 67 पदक के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि तीसरे स्थान पर कोरिया है यानी दक्षिण कोरिया 8 गोल्ड 8 सिल्वर 25 ब्रॉन्ज समेत 41 पदक के साथ तीसरे स्थान पर, जबकि भारत की बात करें भारत पदक तालिका पर तीसरे स्थान 13वें स्थान पर है, 1 गोल्ड 5 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज समेत कुल भारत के खाते में 12 पदक हैं। कल यकीनन भारत की जो पदक की संख्या उसमें इजाफा होगा और उम्मीद है कि जो तालिका पदक की है उसमें भी भारत की जो तालिका में जो स्थान है उसमें भी उछाल होगा, जो 13वें से उम्मीद है कि और ऊपर भारत जाएगा। फिलहाल आज की इस अंतिम अपडेट के साथ मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी को प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ इजाज़त दीजिए, नमस्कार।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: Thailand's hockey team continued their goal-scoring spree by thrashing Thailand. The best moment for India came from the weightlifting arena. So let's hear what Vijeta Chaturvedi had to say.
1: भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। मीराबाई चानू ने कुल 198 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने स्नैच में 87 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उनका कुल स्कोर 198 किलोग्राम रहा। गोल्ड मेडल नॉर्थ कोरिया की री सोंग गुम ने जीता। उन्होंने कुल 215 किलोग्राम वजन उठाया, स्नैच में 94 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 121 किलोग्राम। लेकिन भारत के नजरिए से मीराबाई का ये सिल्वर मेडल बेहद महत्वपूर्ण है। ये उनका एशियन गेम्स में पहला मेडल है। इससे पहले हंगजाऊ एशियन गेम्स 2023 में मीराबाई चौथे स्थान पर रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने पोडियम पर जगह बनाकर एशियन गेम्स में अपने मेडल के सूखे को खत्म कर दिया। मीराबाई के सिल्वर मेडल ने भारतीय वेटलिफ्टिंग के 28 साल के इंतजार को भी खत्म कर दिया। भारत ने आखिरी बार 1998 में बैंकॉक एशियन गेम्स में कर्णम मल्लेश्वरी के जरिए वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता था। मीराबाई चानू के साथ भारत की वेट लिफ्टिंग टीम में भारत की भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव का महिलाओं के 53 किलोग्राम स्नैच राउंड में पहले प्रयास में 84 किलो और दूसरे प्रयास में 87 किलोग्राम का वजन उठाया था, लेकिन तीसरे और आखिरी प्रयास में वो विफल रही। वो 90 किलो का वजन नहीं उठा सकी, यानी कि स्नैच राउंड में 87 किलो उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा। क्लीन एंड जर्क में 108 किलोग्राम का वजन उठाया। उन्होंने कुल 195 किलोग्राम का संयुक्त भार उठाकर अपने अभियान को 8वें स्थान पर समाप्त कर दिया।
0: We also had great news from Wushu and Sakshi Manwal has a report.
2: Roshivana Devi secured her place in the women's 60kg final after beating Indonesia's Thania 2-0 in the semi-final. The Indian Wushu star will now compete for the gold medal in tomorrow's final on 23rd September. With this victory, India now stands assured of a medal from the world of Wushu in the ongoing Asian Games 2026.
0: There was history made for India in soft tennis, and here's a report of how the action unfolded. Jaimina won the bronze medal in men's singles at the 2026 Asian Games in Aichi, Nagoya, becoming the first Indian to win an Asian Games medal in soft tennis. Mina's historic run ended in the semi-finals, where he lost to Japan's Takuya Kurosaka 3-5, 1-4, 1-4, 4-1, 6-4, 1-4. The Indian had earlier beaten the Philippines' Sherwin Nagut in a thrilling 7-game quarterfinal to assure India of its first medal in the sport at the Asian Games. The bronze adds to Meena's steady rise on the international soft tennis circuit. Let's now hear from the Indian athlete who created history in Japan. He's speaking exclusively on Akashvani.
3: बिल्कुल भरोसा था और सबसे बड़ी चीज कि हम स्टार्टिंग में क्वार्टर फाइनल्स भी हारे, हम मिक्स डबल्स में भी प्री क्वार्टर फाइनल्स हारे, तो उसके बाद यहाँ पर मेडल निकालना ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि जब मेंस इवेंट में हम जीता जीता मैच हारे थे तो रात रात नींद नहीं आ रही थी और मेंटली बहुत प्रेशराइज भी हो रहे थे, और उसके बाद मिक्स डबल्स इवेंट्स में भी हम जीता हुआ मैच हार गए तो और डिसअपॉइंट हुआ मैं खुद से बहुत। मैं ही जान पा रहा हूँ कि वो कितना मुश्किल था मेरी टीम के लिए, मेरे कोच के लिए, मेरे घर वालों, स्पेशली इंडिया के लिए, इंडिया के सॉफ्ट टेनिस के जो बच्चे थे, जो करोड़ों भारतीयों की उम्मीद है उस पर खड़ा उतरना सर, ये मेरे लिए ओलंपिक मेडल से बराबर है। आकाशवाणी से जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, इट वॉज अ मोटिवेशन, मौका दिया था मेरे सपने और मेरी इच्छा जाहिर करने का दुनिया के सामने, तो सुदेश सर और हमारा सपना था सर आज हम यहाँ पर खड़े हैं, तो वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आकाशवाणी का, टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: Time now to head to the shooting range where Shahid Azmi has a report from a mixed day for the Indian contingent.
4: शूटिंग रेंज से भारत के लिए डबल ब्रॉन्ज की खबर सामने आई है। स्कीट टीम इवेंट में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला और पुरुष दोनों टीमी स्पर्धाओं में कांस्य पदक अपने नाम किए। सबसे पहले बात महिला स्कीट टीम की, रायजा ढिल्लों, परिणाश धालीवाल और महेश्वरी चौहान की तिकड़ी ने शानदार निशानेबाजी करते हुए 331 अंक हासिल किया और भारत की झोली में कांस्य पदक डाल दिया। और इसके बाद पुरुष स्कीट टीम ने भी कमाल कर दिया। ओलंपियन अनंतजीत सिंह नारुका, महराज अहमद खान और भौतेक सिंह ने कुल मिलाकर 346 अंक हासिल किए और भारत को एक और कांस्य पदक दिलाया। वहीं महिला स्कीट के व्यक्तिगत फाइनल में रायजा ढिल्लों भी चौथे स्थान पर रही, जबकि शूटिंग के एक बड़े मुकाबले में मनु भाकर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में 181.1 अंकों के साथ पांच

0: स्थान पर रही, यानी शूटिंग रेंज पर भारत ने आज दो कांस्य पदक जरूर जीते, लेकिन राजा ढिल्लों, अनंतजीत सिंह नरूका और मनु भाकर के व्यक्तिगत मुकाबलों में पदक से चूकने का मलाल भी रहा। निराशा ईशा सिंह और सुरुचि सिंह के प्रदर्शन से भी हुई। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल इवेंट के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। आपको बता दें, ईशा सिंह ने 572 और सुरुचि ने 568 अंक हासिल किए। भारत को शूटिंग से अब तक कुल 7 मेडल मिले हैं, जिनमें 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। हालांकि गोल्ड से अभी भी दामन खाली है। आपको ये भी बता दें, पिछले एशियन गेम्स में भारत ने 7 गोल्ड सहित कुल 22 पदक जीते थे।
1: The Indian women's team was in action in hockey and well, it was another one-sided encounter. India continued its unrelenting form in the women's hockey competition at the ongoing Asian Games after blanking Thailand 21 in a Pool B fixture. This win joins the list of India's thumping 19-0 and 17-1 victories over Uzbekistan and Indonesia respectively. Forward Deepika starred with 9 goals, while Navneet Kaur scored 4, Rutuja Pistol bagged a hat-trick. India won bronze in Hangzhou 2023 and is in hunt for their first Asian Games gold since 1982. Time now to check out what happened in the boxing arena.
0: भारत के अंकुश पंघाल आज मुक्केबाजी स्पर्धा में सर्वसम्मति से हुए फैसले में जीत के साथ पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पहली बार एशियाई खेलों में उतरे 21 वर्षीय राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पंघाल ने बहरीन के हमसा ओगेल को प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 5-0 से हराया। पिछले साल विश्व मुक्केबाजी कप में रजत पदक जीतने वाले अंकुश अब पदक पक्का करने से एक कदम दूर हैं। वो क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के नेहरूज सालिमोव खेलेंगे।
1: टाइम नाउ फॉर ऑल द एक्शन फ्रॉम द इंडियन कंटिजेंट फ्रॉम टेबल टेनिस। साक्षी मानवाल हैज अ रिपोर्ट।
2: Harmeet Desai and Yashaswini Ghorpade booked their place in the mixed doubles quarterfinals with a 3-1 victory over Hong Kong's Yu Kuan Tho and Wing Lam. The Indian pair won 11-6, 11-5, 10-12, 11-7 to advance to the last 8. Manu Shah and Dia Chitale stormed into the mixed doubles quarterfinals with a dominant straight games victory over the Maldives' Ahmed Musa and Nazim Eshat. The Indian pair won 11-0, 11-7, 11-6 in just 15 minutes, wrapping up a commanding performance to book their place in the last 8. Harmeet and Yashaswini will face Lin Shidong and Kuai Man of China, while Dia and Manish will face Wong Chun and Du Hoi of Chinese Taipei.
1: The Indian contingent has been giving their best in fencing. Vijeta Chaturvedi has more.
3: फेंसिंग मतलब तलवारबाजी का खेल। इंडिविजुअल सेबर में गीशो निधि कुमार सेन पद्मा ने राउंड ऑफ 32 में शानदार प्रदर्शन करते हुए लाओस के क्विंटम सेसाना को 15-8 से हराया और प्री क्वार्टर यानी कि राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला कजाकिस्तान के आर्टियोम से हुआ। यहां भारतीय फेंसर ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन मुकाबला 11-15 से हार गए। इस परिणाम के साथ कुमार सेन पद्मा का इंडिविजुअल सेबर अभियान समाप्त हो गया। वहीं बात करें महिलाओं की व्यक्तिगत फॉइल स्पर्धा की, तो मीना देवी नौरीम और आशिता स्टेलिन राज जॉयस राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गई।
1: द इंडियन मेन बैडमिंटन टीम वर ट्राइंग टू क्रिएट हिस्ट्री टुडे। Let's hear what Sakshi Manwal has in her report.
2: India lost 1-3 to China in the men's team semi-final at the Asian Games and settled for the bronze medal. Shi Yu Kui defeated Lakshya Sen in straight games, winning 21-16, 21-18 in the opening match of the men's badminton team semi-final. Later, Sattvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty made a strong start against China's Liang Weiqing and Wang Chang, defeating them in straight games 2-0, 21-11, 22-20. They helped India level the score with China at 1-1. However, Li Shifeng beat Ayush Shetty 21-19, 21-13 in straight games to put China 2-1 ahead of India. Arjun and Hariharan went down 21-16, 17-21, 21-9 in the fourth match of the semi-final tie. The Indian pair showed some resistance in the second game, but the Chinese duo quickly stopped the fight back. India's bronze is only its second ever Asian Games medal in the men's team badminton event.
1: India were in action in the Kabaddi competition. Vijeta Chaturvedi has more.
3: Bharatiya Mahila team ka mukabla Iran se hua aur Bharatiya team ne ye match 37-23 ke antar se apne naam kar liya. Mukable ke pehle half mein Bharat 19-15 se aage tha. Dusre half mein Bharatiya khiladi

0: डिफेंडिंग और रेडिंग दोनों में बेहतर तालमेल दिखाया और बढ़त को लगातार मजबूत किया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने ग्रुप स्टेज में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब बात करते हैं भारतीय पुरुष कबड्डी टीम की। पुरुष टीम का सामना बांग्लादेश से हुआ और भारत ने यहां भी बड़ी जीत दर्ज की। भारत ने बांग्लादेश को 48-25 से हराया। पहले हाफ में ही भारत ने 29-9 की मजबूत बढ़त बना ली थी। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष टीम ने ग्रुप स्टेज में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की। बांग्लादेश पर जीत के बाद भारत ने ग्रुप ए से सेमीफाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। अब भारतीय पुरुष टीम का ग्रुप स्टेज में आखिरी मुकाबला 24 सितंबर को चीनी ताइपे के खिलाफ होगा। वहीं महिला टीम भी 24 सितंबर को जापान से भिड़ेगी। इसके बाद 25 सितंबर को सेमीफाइनल मुकाबले होंगे। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का मेडल तो पक्का हो गया है।
1: India were trying to make an impact in swimming after a disappointing day yesterday. Sakshi Mandwal has a report.
2: Sajjan Prakash missed the swimming men's 100-meter butterfly heats. Meanwhile, his compatriot Benedictine Beniston had finished fourth in the heats with a timing of 53.08 seconds. Anish Sunil and Vedant Madhavan finished fourth and sixth respectively in their men's 200-meter freestyle heats. Anish clocked 1 minute 22.65 seconds ahead of Madhavan's 1 minute 23.67 seconds.
1: There were a lot of hopes from the Indian equestrian contingent. Vijeta Chaturvedi has more.
0: भारतीय घुड़सवारों ने इवेंटिंग के क्रॉस कंट्री चरण में हिस्सा लिया। भारत की ओर से फवाद मिर्जा, अर्जुन सिंह नागरा और आशीष लिमई मैदान में उतरे। इसमें ड्रेसेज, क्रॉस कंट्री और शो जंपिंग जैसे चरण शामिल होते हैं, यानी सिर्फ घोड़े की रफ्तार ही नहीं बल्कि नियंत्रण, सटीकता और बाधाओं को पार करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है। हालांकि भारतीय दल का प्रदर्शन आशा अनुरूप नहीं रहा, इसलिए भारत का क्रॉस कंट्री इवेंट में अभियान आज समाप्त हो गया।
1: A lot of the Indian contingent were in action in the squash competition. Well, Sakshi Mandwal will tell us how they fared.
2: Indian squash players Abhay Singh, Veer Chotrani and Tanvi Khanna all advanced to the round of 16 in their respective singles events on the opening day of squash at the 20th Asian Games, Echi Nagoya 2026. Tanvi Khanna made quick work of South Korea's Kim Dami, cruising to a 3-0 victory in just 16 minutes. The Indian won 11-5, 11-7, 11-5 to book a place in the round of 16. Abhay Singh defeated Thailand's Arkaradit 11-1, 11-0, 11-2, cruising to a 3-0 easy victory for himself. Veer Chotrani defeated Sri Lanka's Shamil Vakil 11-8, 11-3, 11-3, then also securing a place for himself in the round of 16 men's singles in squash.
1: There was a lot at stake for the Indian contingent in rowing. Shahid Azmi tells us how it unfolded.
3: रोइंग से भारत के लिए अच्छी खबर है। एशियन गेम्स में भारतीय रोवर्स ने चार स्पर्धाओं के फाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के सिंगल स्कल्स में बलराज पवार ने 6 मिनट 52.84 सेकंड के समय के साथ हीट में तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं पुरुषों के डबल स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी 6 मिनट 15.63 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही और फाइनल ए में पहुंची। लाइटवेट डबल स्कल्स में रोहित और उज्जवल कुमार सिंह ने चौथा स्थान हासिल करते हुए फाइनल में जगह बनाई। क्वाड्रपल स्कल्स में अरविंद सिंह, कुलविंदर सिंह, नवदीप सिंह और जकार खान की टीम ने फाइनल में जगह बनाई। अब भारतीय रोवर्स की नजरें पदक पर हैं। डबल स्कल्स का फाइनल कल सुबह खेला जाएगा।
1: फॉर इंडिया टू स्टे इन कैनू कॉम्पिटिशन दे हैड टू डू वेल टुडे। साक्षी मानवाल टेल्स अस हाउ द इंडियन कंटिंजेंट फेयर्ड।
2: India's men's kayak 4-500-meter team finished third in the heats and qualified for the final A. Arun Singh, Harshvardhan Singh Shaktawat, Varinder Singh, Nucha Singh Oynam combined for a timing of 1 minute 29.447 seconds in the heats. Megha Pradeep finished fifth in the women's canoe single 200 meters heats with a timing of 49.675 seconds and qualified for the semi-final. Sonia Devi and Parvati Geeta ended 6th in the women's kayak double 500-meter heats with 2 minutes 02.538 seconds. They have qualified for the semi-finals. In the men's kayak double 500-meter heats, Chempadil, Satya Prakash, Prasanna Kumar and Prohit Baroy finished on the 5th spot with the timing of 1 minute 41.141 seconds and qualified for the semi-finals. In women's canoe double 500

0: 200-meter heats, Megha Pradeep and Neha Devi finished on the fifth spot with a timing of 2 minutes 8.713 seconds and qualified for the semi-finals.
1: The Indian contingent is really trying their best to make an impact in Sepak Takraw. Let's hear what Vijeta Chaturvedi has for us in her report.
2: फुर्ती संतुलन और किक के खेल सेपेक टैक्रो में आज भारतीय अभियान में भारत के पुरुष टीम रेगु का मुकाबला फिलीपींस से हुआ। भारत के लिए ये मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण था। भारत ने खेल का आगाज शानदार अंदाज में किया। पहले मुकाबले में भारत ने फिलीपींस को 2-0 से शिकस्त दी। उसके बाद दूसरे मैच में भी भारत ने कड़ा मुकाबला करते हुए स्कोर 2-1 कर दिया, लेकिन तीसरे और निर्णायक रेगु में भारत को झटका लगा। फिलीपींस ने वापसी करते हुए तीसरा रेगु 2-0 से जीत लिया। इस तरह भारत ने मुकाबला तो 2-1 से जीत लिया, लेकिन अपने पहले मुकाबलों में भारत जापान और मलेशिया से हार के चलते सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाया। भारत का टीम रेगु अभियान यहीं समाप्त हो गया, लेकिन सेपेक टैक्रो के अन्य इवेंट्स में अभी संभावनाएं बाकी हैं।
1: Well, you've heard all the special reports. So, where is India in the medal standing? Well, Vijeta Chaturvedi will just tell us.
2: भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीत लिए हैं। क्रिकेट में 1 स्वर्ण पदक, शूटिंग में 4 रजत पदक और 3 कांस्य पदक, वेटलिफ्टिंग में 1 रजत, बैडमिंटन में 1 कांस्य, मिक्स्ड मार्शल आर्ट में 1 ब्रॉन्ज और सॉफ्ट टेनिस में 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। इस तरह आज के मुकाबले खत्म होते होते भारत ने पदक तालिका में 13वां स्थान प्राप्त किया।
1: So 24th September Thursday, what does that have in store for us from Japan? Well, Rosha Beena Devi is going to go for gold in Wushu. She's going to be in action against Zhang Zhao in the women's 60kg Wushu Sando competition. And don't count out our rowing contingent. They are all in action. There's men's single sculls finals, men's double sculls finals. We have women's four finals as well in rowing, as well as lightweight men's double sculls finals and men's quadruple sculls finals. All gold medal events. Our shooting team will be hoping to put the women's contingent 10-meter air pistol disappointment behind them. The men, can they do the needful tomorrow in their individual and team competition? As well, our skeet mixed team competition is also happening and hopefully they get us a medal. We also have athletics action where Asha Lango and Niharika Vashisht are in the women's triple jump final and Seema is in action in the women's 10,000 meters. And finally, the Indian contingent is also in action in the kayak where there are a lot of gold medals at stake. Also in artistic gymnastics, Pranati Nayak is in action in the women's world final. And not only this, but the Indian men's team is in action in Kabaddi. The Indian men's team has a blockbuster hockey match against South Korea. We have our boxers also in action. So it's going to be an action-packed day at the Asian Games. So make sure you stay tuned for all the updates coming to you every hour on the hour from 9:30 a.m. on Akashwani. So from producer Shahnawaz Khan, editor Vandana Bhadwaj and me Abhinav Punchi, we bid you farewell and hoping for another great day for the Indian contingent at the Asian Games.
3: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Along with my co-anchor Subodh Mishra, I am Sarabjit Kaur.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज की खबरों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ दीपशिखा सिकरवार. दीपशिखा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद सुबोध जी. गुड इवनिंग सरबजीत.
0: गुड इवनिंग मैम.
1: पहले हेडलाइंस सरबजीत से.
0: Benchmark domestic indices rise, Sensex gains 299 points, Nifty settles nearly 24,450. Global rating agencies Fitch and S&P Global raise India's GDP growth forecast to 6.9% and 7% respectively for this fiscal year. And global crude oil prices slip to near two-week low. Brent hovers around $100 per barrel.
1: प्रमुख शेयर सूचकांकों में बढ़त. सेंसेक्स 299 अंक बढ़ा. निफ्टी 24,450 के पास पहुंचा. वैश्विक रेटिंग एजेंसियों फिच और S&P ग्लोबल ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का GDP विकास अनुमान क्रमशः 6.9% और 7% ठहराया. और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें लगभग दो हफ्ते के न्यूनतम स्तर पर. ब्रेंट क्रूड लगभग $100 प्रति

0: impact of that, which is being felt in the currency markets also. So all these factors need to be sort of taken into account when you actually are betting or buying, particularly for short term.
1: जी दीपशिखा, आपने कुछ कारक तो गिना ही दिए अभी जिनका उल्लेख मैं करना चाहता था, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी हर जगह के जितने भी हम मार्केट्स पर नज़र डालते हैं, जिनको हम मॉनिटर करते हैं लगातार, आपने अमेरिका का उल्लेख किया अभी, फेड रेट्स का उल्लेख किया आपने, इसके बाद हम देख रहे हैं जैसे कल नैस्डैक या पिछले दो दिनों में काफी सकारात्मक रहा और बिल्कुल काफी
0: बहुत
1: अच्छा भी रहा,
0: बहुत
1: जबरदस्त
0: रही है. हाँ.
1: वो हमारे बाजारों पर दिखाई नहीं देता है.
0: बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है एक बहुत अजीब कहना चाहिए, बहुत ही एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है. अर्थव्यवस्था अगर आप देखें तो काफ़ी मजबूत स्थिति में है. आज भी जिस तरह के प्रोजेक्शंस आ रहे हैं बहुत बेहतर हैं, लेकिन जो चुनौतियां हैं अर्थव्यवस्था के सामने, खास तौर पे अगर हम देखें क्रूड को लेके या वेस्ट एशिया क्राइसिस को देखें, तो वो एक भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है. तो ये ओवरहैंग जो बाजार पर बना हुआ है, और ये काफ़ी कुछ समय हो गया है इसको चलते हुए, दूसरा कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, आईटी क्षेत्र में जो आशंकाएं हैं वो बराबर बनी हुई हैं. एल नीनो का जो है आउटपुट पर कृषि के उस पर क्या असर होगा, वो आशंकाएं हैं. उस पे अर्निंग्स में, कंजम्पशन में, हालांकि अभी मजबूत है कंजम्पशन, लेकिन कुछ एक ओवरहैंग सेंटिमेंट में ऐसा बिल्ट अप हो रहा है. तो मुझे लगता है कि जो फेस्टिव सीजन आने वाला है, हो सकता है कि थोड़ा उस तक अगर वैश्विक स्थिति थोड़ी सुधरती है तो शायद बाजार भी थोड़ा मजबूती की तरफ बढ़ेगा.
2: Deepshikha, since you touched upon the projections part, let's first see what have been the projections as of now. Fitch Ratings has raised its forecast for India's GDP growth in the current fiscal year to 6.9%, up from its earlier projection of 6.4%. In its June Global Economic Outlook, the agency attributed the upward revision to strong first quarter growth and the resilience of the Indian economy. However, Fitch expects economic momentum to moderate during the second half of the fiscal year. It also anticipates that the Reserve Bank of India may raise interest rates by 25 basis points at its October monetary policy meeting, citing strong domestic demand, rising prices, and adverse supply side developments. Consumer spending growth is expected to slow to 5.7% in financial year 27, compared with 7.2% in the previous financial year. Fitch projects India's GDP growth to ease further to 6.5% in financial year 28, while inflation could rise to 5.5% by December 2026.
1: और इसके साथ ही स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भी चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि का अपना अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है. एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक गतिविधि पर अपनी रिपोर्ट में S&P ने बताया कि विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक हैं मजबूत औद्योगिक गतिविधि, स्वस्थ उपभोक्ता मांग, मजबूत वस्तु निर्यात और बढ़ता सरकारी निवेश. उसका अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 में उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसतन 5.1% रहेगी. हालांकि S&P ने चेतावनी दी है कि इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में विकास कमजोर हो सकता है, क्योंकि GST को युक्तिसंगत बनाने और आयकर कटौती का लाभ धीरे धीरे कम होता जाएगा. एजेंसी ने मौसम संबंधी जोखिमों का भी उल्लेख किया है. उसके आकलन के समय कुल वर्षा सामान्य से 15% कम थी, इसलिए कृषि उत्पादन और खाद्य मुद्रास्फीति पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा. दीपशिखा, अभी आप जिसका उल्लेख कर रही थी, मौसम, एल नीनो और अब इसमें GST का जिक्र आ ही गया है, आयकर कटौती का भी उल्लेख आ गया है. इसके अलावा लेकिन जो खासकर हम फिच रेटिंग्स पर तो बाद में हम चर्चा करेंगे, इसके अलावा भी अगर हम देखें

0: हैं, तो कुछ और भी रेटिंग्स आई हैं दुनिया में, माहौल है कि भारत की
1: स्थिति अगर अच्छी आप देखें है। तो आज जो है ओईसीडी ने भी अपना आउटलुक निकाला है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और दोनों ने इंडिया की जो ग्रोथ है उसको बढ़ा दिया है। तो ओईसीडी ने उसको 7.1% कर दिया है 6.3% से, और एडीबी ने भी 7% कर दिया है 6.6% से। और सभी एजेंसियां ये कह रही हैं कि भारत में एक तो सर्विस क्षेत्र जो है, उसके अलावा निर्यात क्षेत्र ने जिस तरह का मजबूती दिखाया है, खासतौर से हम जानते हैं कि किस तरह की चुनौतियां इस क्षेत्र के सामने आई थी, तो उसके अलावा सरकार की तरफ से खासतौर से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है जिस तरह का बढ़ाया गया और जिस क्षेत्रों पे खर्चा किया गया, तो उसका असर जो है अब निजी क्षेत्र के भी निवेश पर नजर आ रहा है, जो कि जीडीपी के आंकड़ों में भी सामने आया था, और इन एजेंसियों ने भी यही चीज दोहराई है आज।
0: जी
2: So, Deepshikha, we'd like to take you back to the Fitch ratings, and we'd like to have your word on this. What does this upward revision tell us about the underlying strength of the Indian economy?
1: Sarabjit, you know, we've been discussing this, you know, and like I said earlier, Indian economy is in a very strong position. The data is clearly showing that there is strong consumption, which the data showed us. Private investment, which was one of the key challenges, is now begin to show some movement there. So which was the greatest news? So despite all the challenges which these agencies have highlighted, it needs to be seen that overall the situation of the economy remains robust despite, you know, the risks which have been flagged. There is inflation risk which has been flagged, and also the El Nino risk, which can impact farm output, which can therefore have some implications for the demand. Whether this would translate to markets, like I said, maybe you could see the festive season sort of brings in back that kind of strength which the economy is showing in the markets.
0: जी देवशिखा, जो जिसका उल्लेख अभी S&P ने किया है, जो चार फैक्टर्स बताए हैं कि मजबूत औद्योगिक गतिविधियां हैं हमारे यहाँ, और उपभोक्ता मांग काफ़ी अच्छी है, और वस्तुओं का निर्यात काफ़ी मजबूत हालत में है, और इसके साथ बढ़ता सरकारी निवेश भारत में और हमारे GDP में, अगर हमेशा से हम देखें तो ये सरकारी निवेश वाला फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है हमेशा से। अभी क्या हालत है और कहाँ कहाँ इसमें बढ़ोतरी हुई है जिसका असर हम देख सकते हैं, जो इन प्रोजेक्शंस में दिखाई दे रहा है?
1: अगर आप देखें सरकारी जो निवेश है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कोविड के समय से, और चूंकि सरकार ने ये देखा कि जो जिस तरह का संकट देश के सामने था, उस समय निजी क्षेत्र जो है वो निवेश नहीं कर सकता था, तो सरकार ने खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग अपना बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर में खास तौर से निवेश किया गया। अगर आप देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, हाईवे सेक्टर, रेलवे सेक्टर, सभी क्षेत्रों में कैपिटल एक्सपेंडिचर को काफ़ी हद तक पुश किया गया। अगर आप देखें रेलवे का उदाहरण लें, रेलवे काफ़ी हद तक अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस साल का जो बजट है उसको काफ़ी हद तक वो टारगेट्स अचीव कर चुका है। तो ये एक जो पुश है बराबर सरकार की तरफ से की जा रही थी, और उससे ग्रोथ को काफ़ी बल मिला है। जो क्षेत्र जहाँ पर खासतौर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर बहुत बल मिला, डिमांड वहाँ क्रिएट हुई है, और अब उसका असर जो है फाइनली नज़र आ रहा है। जिस तरह से निजी क्षेत्र का निवेश अब थोड़ा थोड़ा चालू हो गया है कुछ क्षेत्रों में, तो उम्मीद की जाती है कि ये आगे मजबूती पकड़ेगा। और जैसा कि हम कह रहे थे कि हो सकता है आने वाले समय में ये मजबूती जो

0: अर्थव्यवस्था की है वो निवेशकों को बाजार की तरफ और आकर्षित करे और बाजार में मजबूती आए लेकिन हां बाजार का एक सेंटिमेंट जो है जैसा कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे उस पे बातचीत कर रहे थे वैश्विक स्थिति जो है बहुत अनुकूल नहीं है बहुत चुनौतियां हैं वहां पर तो अगर वैश्विक स्थिति जो है वो अनुकूल रहती तो हो सकता है भारतीय बाजार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा हो
1: जी हम कह सकते हैं कि हम टिके हुए हैं और खास करके जो जीडीपी के अनुमान हैं ये तमाम संकटों के बावजूद बेहतर
0: बिल्कुल भारतीय अर्थव्यवस्था काफी अच्छी स्थिति में टिकी हुई है आंकड़े कम से कम यही बता रहे हैं
1: जी और अगली खबर है भारत कनाडा व्यापार पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अच्छी प्रगति कर रही है और दोनों देश दिसंबर के मध्य में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन तक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कार्नी ने यह भी कहा कि उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय के आसपास कनाडा की यात्रा करेंगे हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है कनाडा के प्रधानमंत्री ने यह बात कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कही प्रधानमंत्री कार्नी अगले दशक में अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों के साथ कनाडा के व्यापार को दोगुना करना चाहते हैं उन्होंने भारत को उस व्यापक प्रयास का हिस्सा बनाया है जिसका उद्देश्य अमेरिका पर कनाडा की निर्भरता को कम करना है दीपशिखा ये जो कनाडा और अमेरिका का पुराना रिश्ता था उसके बिल्कुल नए आयाम दिखाई दे रहे हैं अब
0: बिल्कुल देखिए जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स है वो अगर हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों से एक नया ही जो जियोपॉलिटिकल कहना चाहिए अलायंसेस जिस तरह के उभर रहे हैं और मतलब जो ग्लोब है उसका स्थिति बदलता जा रहा है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है उनको मैनेज करना और इसीलिए सरकार जो है इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है उन पे बहुत फोकस कर रही है
1: जी और एशियाई शेयर बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.9% बढ़ा जापान का शेयर बाजार आज भी बंद है
2: Well, moving on further with our stories, U.S. President Donald Trump has defended his administration's military action against Iran in an address to the 81st U.N. General Assembly in New York yesterday. He urged countries to maintain economic pressure on Tehran and said Iran faces a choice between reaching a deal and facing further U.S. military action. Mr. Trump said the United States had targeted Iran's nuclear program and weakened its military capabilities. He reiterated that Washington would not allow Iran to acquire nuclear weapons. He urged for the complete economic isolation of Iran.
3: I call on all nations to join us in enforcing the complete economic isolation of Iran until they stop their attacks on commercial shipping, relinquish their nuclear ambitions, and cease their support of terror. If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace of Iranian terror, and oil prices will come plummeting down even lower than they were at the start of the conflict, and they were very low.
2: Meanwhile, U.S. President Donald Trump has said his administration strongly supports the India-Middle East-Europe economic corridor. President Trump made the remarks while addressing a meeting with Gulf Cooperation Council and Arab leaders on the sidelines of the UN General Assembly. He said there is a need to shift Middle East energy infrastructure away from Iranian checkpoints amid multiple strikes on West Asian countries during the war.
4: Iran's terrorist attacks on commercial shipping in neighboring countries have shown the need to shift Middle East energy infrastructure away from the Iranian checkpoints. That's why my administration strongly supports the India-Middle East-Europe economic corridor and other places, a form of getting oil out, pipelines or anything else. And together we're on the verge of overcoming challenges that have plagued this region for a decade.
2: So Deepshikha, against the backdrop of a rapidly changing geopolitical landscape, what significance does President Trump's this address to the 81st UN General Assembly hold for the international community?
0: You know, global community was expecting some kind of direction or some kind of indication from President Trump's address to UN General Assembly on which way, you know, the conflict in Tehran will

0: course. And it looks clear that as of now, I think the cues are that it's not coming to an end very swiftly. While he's appealing to, you know, the global community to come together and allow, you know, whatever, acquire, not allow Iran to acquire nuclear weapons. But I think the cues are that it will probably continue for some time. But I think the most important takeaway for me is, I think, his endorsement of India-Middle East-Europe economic corridor. I think this is something which India has been sort of stressing on, the importance of it. And this endorsement definitely sort of reiterates what India has been pushing for.
1: Addressing the India Community of Latin America and Caribbean States, CELAC, Foreign Ministers Meeting during the UN High Level Week 2026 in New York, External Affairs Minister S. Jaishankar called for stronger economic and development partnerships between India and the CELAC. He said India-CELAC trade has now crossed $50 billion annually.
2: The India-CELAC trade has now crossed over $50 billion annually, yet there is much more room to progress. Our strengths are highly complementary. India brings technology, pharmaceuticals, skilled resources, digital capabilities and a large and growing market, while the CELAC offers opportunities in critical minerals, sustainable energy, agriculture, food resources and other natural assets. Our own growing middle class makes us a natural partner for each other.
1: So there's a call for a stronger India-CELAC cooperation, a greater voice for the global south. Deepshikha, we'd like to know from you, against the backdrop of changing global equation, how important is greater cooperation between India and the Latin American and Caribbean region?
0: See, like we discussed earlier, you know, India is trying to forge alliances with different countries and global south. Definitely, this was the theme at G20 also. That's a big focus area for India. Latin America, as we know, they have some critical minerals and we are trying to reach an agreement with them on supply of critical minerals. So definitely a big focus area for India is forging these multiple trade alliances with multiple trade partners to secure resilience of its own supply chains.
3: जी और नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट ढांचा अगले महीने की 15 तारीख से लागू होगा. इस ढांचे के तहत ₹2,000 तक के यूपीआई लेन देन पर शून्य एमडीआर लगेगा. आपको यह शंका हो सकती है कि क्या यूपीआई के माध्यम से दोस्तों या परिवार को पैसे भेजने पर कोई शुल्क लगता है. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने कहा है कि पर्सन टू पर्सन लेन देन भुगतान करने वाले यानी पैसा भेजने वाले और लाभार्थी यानी पैसा प्राप्त करने वाले दोनों के लिए पूरी तरह से मुफ्त रहेगा. यूपीआई का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी राशि ट्रांसफर करने या प्राप्त करने या यहाँ तक कि खुद के खातों में भी ट्रांसफर करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. नागरिक बिना किसी लेन देन शुल्क के किसी भी स्वीकृत राशि का यूपीआई पर स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर कर सकते हैं.
1: Global crude oil prices rose today but remained near a two-week low as concerns over rising supplies continued to weigh on the market. Brent crude was trading 1% higher at $100.19 per barrel. West Texas intermediate crude was trading 0.1% up at $90.61 per barrel at the time of writing this report.
3: तेल पर छोटी सी बात बता दें दीपशिखा.
0: तेल तो बहुत ही अनसर्टेन हो गया है. हम देख रहे हैं वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट जब तक रिजॉल्व नहीं होता है तब तक तेल पर प्रेशर बना रहेगा. भारत के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है.
3: और भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.1% गिरकर ₹1,52,016 प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. चांदी मामूली गिरावट के साथ ₹2,32,766 प्रति किलोग्राम पर चल रही थी. और दीपशिखा आज वक्त इतना ही है. हालांकि चलते चलते हम जरूर कहना चाहेंगे कि ये जो सोने और चांदी का हाल था पिछले एक दो सालों में हमने जो हाल देखा था कई लोगों के लिए बहुत अच्छा निवेश साबित हुआ था. लेकिन अब देख रहा हूँ वो शायद उतनी ज़्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है या इतने पीक पर पहुँचा हुआ है कि अब लोग बहुत ज़्यादा इस पर भाव नहीं दे रहे.
0: बिल्कुल.

0: जो एक एकदम तेजी जो आई थी दोनों सोने और चांदी के दामों में, वो थोड़ी सी ठहर गई है, थोड़ा ठहराव आया है। तो अब जो अगर निवेश भी है वो लॉन्ग टर्म और पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए, उस पर आपको देखना होगा।
1: जी, देशरेखा कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: Listeners, before we wrap up, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise, Sensex gains 299 points, Nifty settles nearly 24,450. Global rating agencies Fitch and S&P Global raise India's GDP growth forecast to 6.9% and 7% respectively for this fiscal year, and global crude oil prices slip to near 2-week low. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: தொடர்வது ஆங்கிலத்தில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அஞ்சலி. भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का OIC को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा

0: जा सकता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की युवा शक्ति की आवश्यकता है।
2: युवाओं को सशक्त, संस्थागत, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। अब ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से जो साथी, आत्मविश्वास, आत्मअनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्य से भी परिपूर्ण।
1: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का, हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और

पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का, हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने कहा कि बाजार नियामक सेबी लंबी अवधि वाले डेरिवेटिव उत्पादों के लिए मार्जिन आवश्यकताओं को तर्कसंगत बनाने पर विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य वायदा एवं विकल्प खंड में जोखिम प्रबंधन और वित्तीय क्षमता अनुसार तथा दीर्घकालिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, जिससे निवेशक सुरक्षित ट्रेड करें और धीरे धीरे मुनाफा कमाएं। राजस्थान के जोधपुर में कल एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें आग बुझाने के प्रयासों के दौरान विस्फोट में 13 अग्निशमन कर्मी घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि परिसर में रखे ज्वलनशील रसायन के ड्रमों में आग पकड़ने से ये तेजी से फैल गई, जिससे कई विस्फोट हुए। घटना की सूचना मिलते ही करीब 10 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में आज आंधी चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: நேர்கள் இதுவரை இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சியில் மெல்ல திறந்தது கதவு, கடலோர கவிதைகள் ஆகிய படங்களிலிருந்து பாடல்களை கேட்டு ரசித்தீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: அஞ்சலி. भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीय पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उनसे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मा कुमारियों की ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
2: युवाओं को संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। अब ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से जो साथी आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
1: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश

द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के, तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी से लाए गए 12 किलो सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत बांग्लादेश सीमा पर सोने की तस्करी रोकने के लिए कई बार कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रूपये मूल्य का 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी ना ओरेम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमानिंग त्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारत

0: நினைவில் நின்றவை நிகழ்ச்சியில் இதுவரை 500,000, நம் நாடு, அடிமை பெண் ஆகிய படங்களிலிருந்து சில பாடல்களை கேட்டு ரசித்தீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அஞ்சலி. भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर कर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का OIC को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मा कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
2: युवाओं को संस्थागत, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से जो साथी आत्मविश्वास, आत्मअनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्य से भी परिपूर्ण।
1: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का, विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के, तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पूनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का, अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांधा एक्सप्रेस आज कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित की जा चुकी है। इनकी बिक्री 35 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में संशोधित उड़ान योजना लागू करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ एक समझौता

ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राज्य सरकार की ओर से आंध्र प्रदेश हवाई अड्डा विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने इस पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। आंध्र प्रदेश उन 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है जिन्होंने इस योजना के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। संशोधित उड़ान योजना का उद्देश्य किफायती हवाई संपर्क का विस्तार करना और कम सेवा वाले और सेवा रहित क्षेत्रों में विमानन बुनियादी ढांचा मजबूत करना है। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी नाओरेम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमा निंगत्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारतोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा के माहेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री टोपियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी स्मार्ट एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मा कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को सशक्त संस्कार बन आत्मनिर्भर शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। अब ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान टेक्निक और कौशल से युक्त साथी आत्मविश्वास आत्म अनुशासन सकारात्मक सोच संवेदनशीलता और नैतिक मूल्य से भी परिपूर्ण।
0: निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देश भर में 40 नई महल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का, विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के, तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पूनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का, अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA ने आज से 26 सितंबर तक 7वें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यमुना पर अकादमिक विमर्श केंद्रित रहेगा। कार्यक्रम में नदियों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान, समकालीन चिंताओं और उनके सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व से जुड़ी सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव देवजीत सौकिया ने कहा है कि मौजूदा चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर का कार्यकाल 4 अक्टूबर को समाप्त होने तक बोर्ड के पास पर्याप्त समय है और इसके बाद ही इस पद को लेकर कोई फैसला किया जाएगा। अजीत अगरकर ने 18 सितंबर को BCCI को बताया था कि वे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की चयन समिति के अध्यक्ष के तौर पर अपने 3 साल के कार्यकाल को आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं है। श्री सोकिया ने मीडिया से कहा कि BCCI जब भी निर्णय लेगा उसे सार्वजनिक

एक रूप से घोषित किया जाएगा। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी ना ओमिन वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमानिंग त्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा, भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्माकुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को सशक्त, संस्थागत, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्य से भी परिपूर्ण।
0: निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देश भर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा है कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का, हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का, विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के तथा तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पूनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का, अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांधा एक्सप्रेस आज कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए ये कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित की जा चुकी है। इनकी बिक्री 35 रुपये प्रति किलो की दर से की जा रही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में आज से 26 सितंबर तक सातवें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यमुना पर अकादमिक विमर्श केंद्रित रहेगा। कार्यक्रम में नदियों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान, समकालीन चिंताओं तथा उनके सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व से जुड़ी सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में आज आंधी आ सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham.

0: பொங்கும் மங்களம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை ஷர்மா நகர் பிவிஎன் தேவராஜ், டி பாகீஸ்வரி ஆகியோரின் நாகஸ்வரி இசை கேட்டோம். எல் எண்டத்தூர் ஜி விநாயகம் அவர்கள் தவில். எஃப்எம் கோல்டில் இனி தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சன்
1: மனோஜ். भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएँ स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन OIC के तथा कथित जम्मू

0: कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा हैं। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से ज़मीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मा कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। अब ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देश भर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांदा एक्सप्रेस आज कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए ये कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित किया जा चुका है। इनकी बिक्री 35 रुपये प्रति किलो की दर से की जा रही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में आज से 26 सितंबर तक 7वें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यमुना पर अकादमिक विमर्श केंद्रित रहेगा। कार्यक्रम में नदियों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान, समकालीन चिंताओं तथा उनके सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व से जुड़ी सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी नाओरेम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमा निंग त्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा के माहेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और राइजा ढिल्लों की महिला टीम और अनंतजीत सिंह, नरुका महराज, अहमद खान और भवतेग सिंह गिल की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष बी इब्राहिम। India has reiterated its interests and concerns with regard to sanctioning Russia and Iran Act. External Affairs Minister S. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the UN General Assembly session last evening and raised concerns regarding the act. Both leaders also discussed India-U.S. bilateral relations and Gulf and Ukraine situations. U.S. President Donald Trump signed into law the Sanctioning Russia and Iran Act last week, which authorizes him to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas. In response, New Delhi said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security for the nation. Jaishankar, who arrived in New York City on Sunday, is leading the Indian delegation for the 81st session of